0: कि शांता ने यहाँ पूतना का भी गीत खोज करके रख लिया, पर शांता जी थोड़ा से ठहरिए, हमारे सुनने वालों भी यह वृतांत है जो अंगूठी का है उसे सुनना चाहते हैं, तो हम थोड़ा और आगे ये संदेश ले जाते हैं दोस्तों सुनने वालों, और अभी कुछ और गीत रखा जाएगा। तो राजेंद्र जी आगे बढ़िए।
1: तब श्याम सुंदर बोले या मानेगी नहीं और अंदर मेरी राधा रानी बिरह में होगी, यानी फिकर में होगी भगवान कृष्ण के प्यार में। तभी श्याम ने अपनी अंगूठी देखी जो पहनी थी, वो अंगूठी ऐसी है जिसमें श्री राधा रानी जी के प्रति पल के भाव का श्रृंगार का दर्शन होता है, यानी हर पल मतलब एक एक सेकेंड में श्रृंगार का भगवान जो राधा रानी का श्रृंगार होता है उसका दर्शन होता है, तब भगवान कृष्ण की उस पर नजर पड़ी। तब श्याम सुंदर बोले अच्छा सुन रही, यह अंगूठी तो एकदम सत्य कहेगी, यह अंगूठी तो केवल असली श्याम के पास ही है, यह अंगूठी चित्रा ने मुझे दी थी, यह अंगूठी देख ले जिससे मेरी स्वामिनी दिखती है। लसिका मंजरी बोली बस यही तो हम चाहते हैं, बस श्याम तो वो अंगूठी मंजरी को दिखाता है, मंजरी जब अंगूठी में देखती है तब उन्हें स्वामिनी की वास्तविकता स्थिति दिखती है कि वो अत्यंत विरह में है। मंजरी तभी वो अंगूठी अपनी चुनरी में बांधती है और जल्दी जल्दी अंदर भेजती है। तभी श्याम चिंता करते हैं अब अंगूठी वापस कैसे लूं, पर जैसे ही प्रवेश किया स्वामिनी को विरह में देखा, स्वामिनी के हृदय पर कमल की माला पड़ी थी जो विरह में सूख गई थी। श्याम ने जैसे ही महारानी को देखा सब भूल गए, अंगूठी को और राधा चरण में गिर गए और दोनों परस्पर प्रेम अश्रु बहने लगे। बस यही है राधा अंगूठी कथा, मंजरी को अंगूठी मिली और श्याम को राधा, इस प्रकार से अंगूठी की कथा है, इस प्रकार थी। मुझे लगता है कि जो कृष्ण का प्रेम है और जो सखी हैं उनको वो अंगूठी वापस लेनी थी किसी तरीके से, और उन्होंने इस प्रकार से बाना बनाया कि कृष्ण को अंगूठी उनको देनी पड़ी, और फिर वो बिरहा की जो स्थिति है उसको देखा और पुनः राधा रानी को पाया। अब शांता जी क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े।
0: शांता जी जो प्लेयर पे रख चुके हैं, बस बटन दबाना बाकी है राजेंद्र जी, तो शांता जी आप अपना गीत को और रख सकते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक जो आज का विषय रखा गया, आज जो कृष्ण जी का अंगूठी के अंतर्गत जो संदेश रखे राजेंद्र सिंह जी भारत देश से, और हमारे कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय है उसमें और कुछ संदेश रखा जा रहा है, जिसमें एक गरीब का वृतांत जो बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं। तो बबली जी उस ओर बढ़ रहे हैं कि गरीब, एक गरीब का वृतांत के अंतर्गत बबली जी आपका माइक इस समय ऑन किया जाता है।

0: तो बबली जी जो वृतांत आप हम सबके लिए रखने वाले हैं जरूर हमें और सुनाइए।
1: हाँ जी जरूर। एक गरीब का सफ़र। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डिब्बे में घुस पड़े। ट्रंक मीन्स कॉफर। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतापूर्ण खड़ा रहा। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और यह रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। यह जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसीद बनेगी। यह कह टीसी आगे चला गया।
0: तो बबली जी, टीसी किसको कहते हैं?
1: टीसी जो टिकट चेक करता है,
0: में जो हम कहते हैं कंडक्टर।
1: हाँ हाँ, सही बात। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीबी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं सके।
0: तो बबली जी, ये वृतांत है जो एक समय आप हम सबके लिए रख रहे हैं कि एक गरीब परिवार जो अपने बेटी के बच्चा हुआ बेटी का, हाँ, ना
1: अपने नाती को
0: देखने को जाना चाहते हैं।
1: हाँ।
0: और जाना चाहते हैं तो किस चीज पे? हवाई जहाज से नहीं,
1: रेल से,
0: रेल गाड़ी से।
1: हाँ जी।
0: तो रेल गाड़ी का, जब पनेल के पीछे शांता जी बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम एक गीत चला देते हैं।
1: हाँ जी जरूर।
2: रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोटनूर पोटनूर शोटनूर पोटनूर, चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

0: ये एक रैप कह सकते हैं ना शांता जी, रैप जो अशोक कुमार ने इन द यार बहुत साल पहले के ये गीत है और जो बनाए गए, ये अशोक कुमार ने इस गीत को और बनाए अपने आवाज़ से रखे। पर बबली जी रेलगाड़ी से और यानी कि एक पति पत्नी सफ़र करने वाले हैं।
1: हाँ जी, सफ़र करने वाले हैं और अपने नातिन को देखने जा रहे हैं। तो आदमी कहता है जो सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस में दिए थे। और बीवी बोलती है, बीवी वह लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की पर घुस नहीं पाए थे, लाचार हो स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। जनरल डिब्बा में जिसमें हर कोई जा सकता है बगैर टिकट बुक किए। तो टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए, 100 में कुछ नहीं होता, टीसी कहते हैं 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डी की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब, वो आदमी कहता है।
0: तो इसका मतलब क्या है बबली जी, गुड्डी का डिलीवरी में?
1: अरे उनकी बेटी का नाम है गुड्डो।
0: ओके,
1: तो वो टीसी को बता रहा है कि इतना तो गुड्डो की डिलीवरी में भी नहीं लगे, यानी
2: पैदा होने में।
1: हाँ, जब बच्चा पैदा, क्या कहते, बफालिंग। तो हाँ, तो फिर ऐसा करो 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। यह लो साहब, रसीद रहने दो, 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला। नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से आर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो, टीसी कहता है, वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला, आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। अब गरीब लोग जो होते हैं वो पैसे हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
0: और 400 रुपये, ये जैसे कि हम लोग यूरो से है ना, हम लोग यूरोपा में यूरो होता है और भारत जाओ तो उसे चेंज करते हैं, तो लगभग 5 यूरो ना हुआ।
1: हाँ, तो गरीब लोग के लिए 700-500 रुपये भी ऐसे जैसे हजारों। तो दोनों पति पत्नी उदास हो गए और ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं उसके शोक पर जा रहे हो। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये, दोनों आपस में सोचते हैं।
0: तो सुनने वालों, ये कैसे एडजस्ट करेंगे बबली जी और अभी हम सबको सुनाने वाले हैं कि कैसे एक गरीब कैसे अपना सफ़र करते हैं। और मैं देख रहा हूँ शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं।
3: नहीं, अभी बबली जी जैसे कहा ना कि एक गरीब बहुत मेहनत से कोई उसको डांट बूझ कर और पैसा लेना चाहते हैं तो बहुत मेहनत से दिल रोते हुए देता है पैसा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो शख्स जो ये ऐसे इंसान के पैसा लेगा ना, उसमें बरकत नहीं होगा।
0: अगर जब आप टिकट नहीं लिया तो उसका काम है कि कम से कम एक टिकट आपको दे सके
3: ना, 200 का टिकट 400 में बेचना तो वो भी ईमानदारी भी नहीं ना।
1: नहीं शांता जी, टिकट उनके पास है, लेकिन टिकट उनके पास लोकल डिब्बे की है जिसमें सब लोग भीड़ होती है, चढ़ जाते हैं, और ये जो डिब्बा है इसमें रिजर्वेशन पहले टिकट बुक करवानी पड़ती है।
0: तो बबली जी, ये तो कैसे इस जानकारी को आपको पता, आप कोई ऐसा सफ़र किए हैं कभी?
1: नहीं नहीं, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में थे तो हम रेल में सफ़र करते थे, तो हमको तो पास मिलता था मेरे पापा को, हम फ्री में जाते थे और फर्स्ट क्लास में जाते थे।
0: तो ये हुआ बात कि आपको और किस प्रकार से ये जानकारी को पता है कि कैसे सफ़र करना है ट्रेन से, क्योंकि हमारे सुनने वालों भी ऐसे होते हैं, हॉलैंड से और अन्य देशों से जाते हैं और सफ़र करते हैं ट्रेन में, और कभी कभी इस वृतांत को शायद आप देख करके, इस वृतांत को सुन करके शायद कुछ और समझ सकते हैं और शायद किसी का मदद भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम क्यों ना बबली जी कुछ और कहने वाले।
1: हाँ, मैं कहने वाली थी कि जब भी कोई जाए भारत घूमने पहले हमेशा टिकट बुक करे, फिर सफ़र कर रेल में।
3: सही कही आपने बबली जी कि पहले टिकट बुक करो, पर ऐसा भी होता है कि आप टिकट बुक करते हो, आपका सीट्स है ना, फिर अन्य लोग भी आकर आपके सीट्स पर बैठ जाते हैं।
1: तो शांता जी, तो उनको अपनी टिकट दिखाओ, बोलो आप उठो, ये मेरी टिकट है, मेरी सीट है।
3: आप इतना धीरे से कहते हैं ना कि आप उठो, मेरी सीट है, नहीं ऐसे नहीं मानते। हाँ, आपको कड़क आवाज लेना पड़ता है कि फान हटो हटो हटो हटो।
0: सुनने वालों, यहाँ जो भारत का सफर किस प्रकार से ट्रेन में होता है, शांता का टिकट खरीचर फेयर द स्टूल प्लेक को और किसी और ने प्रयोग कर लिया था, और ऐसा ऐसा घटनाएं तो होते रहते हैं। पर बबली जी, आगे का संदेश क्या है?
1: हाँ जी, जरूर, आगे का संदेश है, फिर पति पत्नी आपस में बात करते हैं, क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसा मांगना होगा? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज़्यादा लाया था, गुड्डो के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए, और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, यानी पैसेंजर ट्रेन से आएंगे जो धीरे धीरे चलती है, फास्ट ट्रेन से नहीं आएंगे। 100 रुपये बच गए, एक दिन ज़रूर ज़्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा, मगर फिर भी यह 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100-100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 देंगे, हम अलग अलग थोड़े ही हैं, हो गए ना 400 एडजस्ट, पत्नी ने कहा।
0: सुनो वालो, हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत गाड़ी बुला रही है, यानी कि हम एक दोस्त फिल्म से निकाला गया ये गीत हम आपके लिए रखने वाले हैं, कि जो संदेश बबली जी ने एक गरीब परिवार जो सफ़र करने के लिए, यानी कि अपने नाती को देखने के लिए दूर शहर जा रहे हैं, जहां उसका बेटी ने अपना बच्चा को जन्म दिए है, पर गरीबताई क्या कराता है कि कभी कभी कितना मुश्किल और समय हो जाता है, किस प्रकार से एक एक शीस जोड़ जोड़ करके हम एक ऐसा देश में रह रहे हैं, शायद ऐसा हम लोगों का यहाँ पर नहीं होता होगा, ऐसा शांता जी कह रहे हैं कि ऐसा है।
3: अगर ऐसा नहीं होता संजय जी, यहाँ गरीबी भी है, गरीबताई भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो फुटसल बैंक नहीं पैदा होता।
0: तो सुनने वालों, ये बात भी है कि होलांत हमारे देश में भी कभी काल के ऐसा वृतांत भी आ सकता है, और जैसे कि मोई फोरबिल जो शांता जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता तो फुटसल बंक भी यहाँ नहीं होते ना, पर वहाँ भारत का वृतांत तो कुछ और है और होलांत का वृतांत कुछ और है। गाड़ी बुला रही है शांता जी, गाड़ी बुला रही है, और चला देते हैं,
3: चले हम सफर करें,
0: चलते हैं हम सफर पे।

0: गाड़ी बला रही है दोस्त फिल्म से निकाला गया ये गीत, और जो गीत का लिखने वाले आनंद बख्शी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जाकर के ये गाना को कंपोज किए थे, एक सुंदर सा संदेश जो बबली जी ने, वैसे तो सुंदर नहीं कह सकते ना बबली जी, ऐसा ये यानी कि दुख भरी संदेश जो एक सफ़र करने वाले जो जा कर के और किस प्रकार से अपना सफ़र करते हैं, अपना और सफ़र को सफलता बनाते हैं। बबली जी
1: सही बात, एक पति पत्नी सफ़र करते हैं और अपने नातिन को देखने जा रहे हैं, तो पति पत्नी आपस में बात करते हैं, पत्नी मगर मुन्ने के पैसे कम करना, और पति की आंखें छलक पड़ती हैं, मन क्यों भारी करते हो जी गुड्डो, जब मुन्ने को लेकर घर आएगी तब 200 रुपये ज़्यादा दे देंगे, कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठे, फिर दोनों अपनी आंखों को पोंछते हैं।
0: एक रास्ता है जिंदगी, यही जिंदगी है, तो ऐसे जो वृतांत बबली जी ने रखे कि कैसे एक परिवार जो अपना और एडजस्ट किया, 400 रुपया के बात होता है ना बबली, जो टीसी हम बढ़िया कहते हैं ना,
1: टीसी
0: ने 400 और भरवाए थे। बबली जी का ये बात सुन करके और हम सब जो कंप्यूटर पे लगा चुके हैं कि एक रास्ता है जिंदगी, ये गीत आपके लिए रखते हैं।

0: एक रास्ता है जिंदगी, जो निकाला गया फिल्म का नाम काला पत्थर, और काला पत्थर से जिसमें किशोर कुमार ने अपना आवाज़ दिए, उस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन अपना अपना कला से प्रदर्शन दिए। पर बबली जी, ये बताइए कि काला पत्थर है क्या? क्योंकि हम लोग सूरीनामा में भी, और काला पत्थर मेरे ख्याल से हम लोग के पास सूरीनामा में था या नहीं था, पर आप बताइए कि असलियत में इस काला पत्थर है क्या?
1: काला पत्थर है कोयला। कोयले की खान जहाँ होती है वहाँ से पत्थर निकलता है, और फिल्म का नाम इसलिए उन्होंने काला पत्थर रखा।
0: पर वो काला पत्थर से क्या किया जाता था?
1: भारत में तो काला पत्थर से अंगीठी जलाते हैं, खाना बनता है, और बड़े बड़े होटलों में भी, ढाबों में खाना बनता है। आपने देखा होगा शांता जी,
2: फिल्मों में भी देखी और हकीकत में वहाँ पे भी देखी। तो आप बात कर रहे थे तो मेरी दिमाग भी दौड़ रहे थे सूरीनाम की ओर, क्योंकि मैंने भी देखा सूरीनाम भी वो सब कैसे बनाते हैं वो काला पत्थर कोयला। हाँ, एक जबड़ बड़का सा धरती में गड्ढा खोद दे, वैसे बड़का से होल, तो पेड़ जो है ना, पेड़ के स्ताम जो है ओके लाई लाई के ओमे भर देवे है, फिर से आगे लगाई के और ऊपरा से तोप दे, वैसे ऊपर से तोप दे, ढक देवे, ताकि उस आगे ऐसन के एक सोर्त के स्मूरू होवे, तो जल के राख नहीं हो बल्कि कोयला होवे। हाँ, तो ऐसा हमने देखी वहाँ पे, तो उसको भी साका में, बस्ता में भर भर के वो सब बेचते थे। तो वो भी जैसे तुम कहते हैं भारत में इस्तेमाल जैसे करते हैं खाना बनाने में ऐसे, तो वो पे भी हमने देखी है।

धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हर बार को अपने समय निकाल कर सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज जो वृतांत बहुत ही कृष्ण भगवान के विरह का, प्रेम का और अलग अलग प्रकार के वृतांत सुने, उन वृतांतों को मनन करेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: दुनिया।
1: जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

जी सुनने वालों, मैं कहती हूँ एक बार फिर कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह हम देखेंगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगी। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम स्वीकार करें।

0: अब तो सनम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। ये आशा रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। नमस्कार।

0: आज हम आप लोग को भी कुछ पुराने गीतों से आपके हम सेवा करेंगे। और पहला गीत हम बढ़ते हैं और वो है हाल है। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। किशोर कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है और इस फिल्म में काम किया है जितेंद्र रेखा, विनोद खन्ना ने काम किया है इस फिल्म में। और फिल्म मूवी का नाम है अनोखा, अनोखी अदा। अनोखी अदा की ओर हम चलते हैं।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम,

और दोस्तों हाल क्या है, हाल क्या है दिलों का, ना पूछो। सनम आज भी बीच बीच में कुछ शायरी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे। क्या कहते हैं, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, मेरे आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है दोस्तों, तेरे आगे जमाना है। तो कुछ कहते हैं एक और कि तो हजार बार भी रोती तो मना लूंगा, तू हजार बार भी रोती तो मना लूंगा तुझे, मगर देख जानू मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो तब तो मनावे, नहीं वैसे लात ना चली। नहीं दोस्तों, प्यार में लात नहीं, प्यार चलते हैं। किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है, फिर क्यों बेवफाई के वो इल्ज़ाम दे रही है। तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है तेरी जाना दिल के, लेकिन चांदनी के पास हम जाते हैं। चांदनी क्या कहते हैं,

और मेरी चांदनी, अगर आप ऊपर देखोगे तो तुम्हारी चांदनी ऊपर आकाश में है या तुम्हारे बगल में है, ये तो आपके लिए हम छोड़ दे कि वो कहाँ है। तो दोस्तों कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, कि कहते हैं अपनों के बीच बेगानी हो गई है। अपनों के बीच कभी कभी होता है दोस्तों कि जो सोचते हैं कि हमारा है उसके बीच में तुम बेगानी हो गए हैं, अपनों के बीच में बेगानी हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वही वीराने, आज वही पर वीरान हो गए है। तो हम चलते हैं अपनी महबूबा के ओर, और आपके महबूबा कौन है वो तो आपके बगल में होगा, लेकिन यहाँ हम फिल्म धर्मवीर के बातचीत करते हैं, और धर्मवीर में ये माँ धर्मिंद्रा, धर्मिंदर सिनत अमन और जोर तोर से इसमें काम किया है, परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और ओ मेरी महबूबा, ओ महबूबा महबूबा में क्या क्या होता है, और गुस्सा होता है और प्यार भी उसी से ज़्यादा होता है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर दोस्तों, की जाती है इस झील की गहराई, जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, यानी कि दीपता कहाँ तक जाते हैं, कि जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, आँखों में तेरी धूप के, आँखों में तेरी धूप के देखेंगे किसी रोज, आँखों में तेरी धूप देखेंगे हम और किसी रोज देखेंगे, और जो देखेंगे तो प्यार तो जरूर होता होगा, कि जो शख तेरे तस्वीर से ही महक ले जाए, जो तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारी दीदार में उसको क्या होगा। तो हम चलते हैं नाइटिंगेल लता जी के ओर, और इस फिल्म में राजकुमार नीतू ने काम किया है, फिल्म के नाम है अनारी।

और तेरा जाना ओ नैतिकी लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं और एक गीत को लक्ष्मी के प्यारे लाल का गाया यानी बजाया हुआ सजाया हुआ ये गीत है मुकेश माइती मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग फिल्म के नाम है जोंग मी तो दीवाना दीवाना और दीवाना फिल्म मिलन की ओर हम लेकर चलते हैं हमारे दोस्तों।

और मैं तो भी दीवाना दीवाना और दीवाना हो चुका है। और हम चलते हैं कि कहते हैं, महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, नींद इसके नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पिला देना गो, दो घूंट पी लेना दे आंखों से पहले से, नशा तेरी आंखों में शराब जैसा। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर, और एक सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग है जो एक इसको पहला पहला प्यार भी कहते हैं दोस्तों।

0: और पहला पहला प्यार तो सभी को होता है, और जिसे पहला प्यार होता है उसके तो मालूम है कि प्यार क्या बातचीत है, प्यार क्या होता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों एक गीत की ओर हम जाते हैं। एक कोई ज़माना में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जया प्रधान ने काम किया है, और ये फिल्म का नाम है शराबी। शराबी फिल्म के नाम पे दोस्तों, लेकिन हम शराबी नहीं हैं, फिल्म का नाम है शराबी। तो आओ मिलकर सुना जाए किशोर जी और आशा भोसले का गाया हुआ, आशा भोसले को गाया हुआ ये गीत है।
1: ये क्या मजाक है विकी साहब?
2: मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे?
1: वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है?
2: हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए।
1: बड़ी मेहरबानी की आपने, शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है।
2: वाह, तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने, इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे।
1: जो बात की गहराई को नहीं समझता वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
2: तवायफ? कोठा मतलब हम आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया।
0: कभी जिंदगी में किसी को जलील मत करना दोस्तों, जलील जब किसी को किया तो वो अच्छा बात नहीं होता है, किसी को जलील मत करना।

और मुझे 9 लक्खा मंगा दे रे। और वो कौन है, किसको कहते हैं? सजना दीवानी के बात होते हैं। और आज आप लोग को हम क्या क्या सुनाएंगे दोस्तों, और हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसका कहते हैं दीवांगनी के ओर हम जाते हैं। कि दीवांगनी में एक लॉन्ग सॉन्ग है भाई, इसमें सैफ अहमद का गीत है, हम आपको सुनाते हैं।

और शांति ओम के बांट और बे हम और आगे को चलते हैं दोस्तों। तो एक दो शायर भी बीच में हम आप लोग को बता देंगे, पढ़ देंगे कि जैसे है इतना बेताब न हो मुझसे, इतना बेताब न हो मुझसे बिछड़ने के लिए, तुझे आंखों से नहीं मेरे दिल से जुदा होना है। तो हम चलते हैं एक गीत के ओर और वो गीत क्या होगा, दे दे और आपसे हम क्या मांगते हैं, ना पैसे मांगते हैं, ना खाना मांगते हैं और ना तमाचा मांगते हैं, सिर्फ प्यार ही प्यार मांगते हैं। और कौन सा प्यार मांगते हैं आपको किशोर दादा ने यहाँ पढ़े और सुनाते हैं।

अरे बैंड वाले भाई साहब, एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं। आप थोड़ा बाजा बजाएंगे, हैं पैसे बाद में। 1 2 3 4

तो देना चाहिए नफरत दुनिया में बहुत कम करना चाहिए दोस्तों। मेरे ख्याल से नफरत नहीं करना चाहिए। काश ये जालिम जुदाई ना होती ऐ खुदा तूने ये चीज बनाई नहीं होती। ना हम उनसे मिलती प्यार होता अपनी जिंदगी फिर पराया नहीं होती। तो दोस्तों हम चलते हैं एक देवर और भौजाई के गीत में। आप लोग जानते हैं देवर भौजाई जो है कभी कभी बहुत मजाक करते हैं। तो देवर और यानी कि देवर और भौजाई का गीत हम आप लोग को सुनाते हैं।

दूर है राम, ये जमाना किसका है दोस्तों? आपको तो खूब मालूम होगा कि ये जमाना कुड़ियों का है, और कुड़ियों का जमाना यानी लड़कियां के जमाना के बांची सी फिल्म में हो रहा है। हमारे सुनने वालों की कहते हैं कि जब बारिश आते हैं तो याद भी बहुत ज्यादा सताते हैं कि खुद भी रोता है और मुझे भी रोला देता है। ये बारिश का मौसम उसकी याद दिलाते हैं और कहते हैं तेरे ऐसी सच्ची आशिक है, तेरे ऐसी सच्चे आशिक है हम, दिल में जिसका प्यार न हो कभी कम। दोस्त तेरे ऐसी सच्ची आशिक है हम, दिल में जिसका प्यार न हो कभी कम। सच्चे प्यार में तो जिंदगी महक जाती है, न जाने हमारी आंखों, न जाने हमारी आंखें क्यों है, क्यों क्या न जाने हमारी आंखें क्यों है नम। तो दोस्तों हम चलते हैं जिसके लिए सबको लोग भूल जाते हैं, और इस फिल्म के नाम है साजन की सहेली परमाश्री मोहम्मद रफी का और सुलक्षणा का गाया हुआ ये सॉन्ग है, और ये फिल्म के नाम है जैसी बताई है साजन की सहेली। सुलक्षणा पंडित इसमें काम किए हैं प्रताप नारायण उदित के, पंडित से अमिषिक दिया है उषा खन्ना ने, राजेश राजेंद्र कुमार, रेखा विनोद मेहरा, नितुन सुरेश अभिराव इसमें भी काम किया है, जिसके लिए सबको छोड़ा उसने मेरे क्या तोड़ा, मूड तो नहीं तोड़ा लेकिन दिल को तोड़ दिया है।

और जिसके लिए सबको छोड़ा और वो क्या किया, जिसके लिए दुनिया छोड़ा और उसने क्या क्या किया, मेरे दिल को तोड़ा। तो ये गीत है जो आपको हम सुनाते हैं, हमारे दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम लाइव प्रस्तुत करते हैं। और ये बारिश के मौसम है तो लोग सुनते हैं कि बारिश का सुहाना मौसम कुछ याद दिलाते हैं, बारिश का सुहाना मौसम कुछ याद दिलाती है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है, फिजा भी सर्द है यादें भी ताजा है, ये मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है, दिल में जगाता है। हमारे यारो तुमको लेकर मेरी ख्याल नहीं बदलेगा, तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, साल बदलेगा मगर दिल का हाल कभी नहीं बदलेगा। और दिल का हाल जो नहीं बदलेगा तो हम चलते हैं एक गीत के ओर जो आपको जरूर पसंद होगा, और वो है क्या भैया, दिल का रिश्ता। मूवी का नाम है दिल का रिश्ता। आओ सुना जाए ये प्यार भरी गीत क्या कहते हैं।

और दया दया रे रे रे रे दया दया के बाद दोस्तों हम और आगे को अपना गीतों की बहार प्रोग्राम लेकर चलते हैं और कहते हैं तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेंगे। अभी बताएं ने दोस्तों कि साल बदल जाएंगे मगर दिल का हाल तो कभी बदलेगी नहीं। जख्म ही देना तो पूरा जिस्म तेरा हवाले था, जिस्म जख्म भी देना है, जख्म ही देना तो पूरा जिस्म तेरे हवाले था। भरम तूने वार किया वो भी दिल ही वार किया। तो उसके बाद हम चलते हैं आज फिरे दोस्तों, हमें जीने का तमन्ना हो गया है। नैतिकेल लता जी का सॉन्ग है और यानी कि रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं, आओ सुना जाए।

सांची फिर आज फिर जीने का तमन्ना है, और जीने के बाद और जीने के बाद क्या होगा दोस्तों, प्यार होगा, और प्यार में तो कभी कभी टकराव भी तो हो जाते ना हमारे यारो, और होना भी चाहिए, यानी कि टकराव नहीं होगा तो कैसे जिंदगी चलेगा। फल एन ऑब्स्टान दट होर्त नाम लेकिन बे बेस्ट लोसरा सो हाथ दुख एन। और हम चलते हैं और आगे को कि कहते हैं रोज एक ताशा शेर, रोज एक ताशा शेर कहाँ तक लिखूं तेरे लिए मेरी जान, रोज एक ताशा शेर कहाँ तक लिखूं तेरे लिए हमारी जान, तुझ में तो रोज ही एक नया बात हुआ करती है, अब रोज रोज नया बात होगा तो कितना शेर जोनी यहाँ से तुम्हारे लिए पढ़ेगा। तो ये बात है कुछ दर्द भरी गीतों की, प्रोग्राम भी हम चलाएंगे और कुछ गीत दर्द भरी शायरी भी आप लोग के लिए हम सुनाएंगे। तुमको लेकर मेरे ख्याल नहीं बदल देंगे, आप तो जानते हैं ना दोस्तों, और क्या होगा। तो हम चलते हैं और आगे कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो हम चलते हैं प्यार से दिलबर, और धर्मेंद्र बबीता इस फिल्म में काम किया है, परमाश्री मोहम्मद रफी और आशा जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और प्यार से दिल भर दे परमा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी का गया हुआ ये जो है हमारे दोस्तों। और हम अपना प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं क्या, कहते हैं क्या दोस्तों, कहते हैं और क्या कहते हैं दोस्तों कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखने में, बताए नहीं दोस्तों। आपके चेहरा जब देखूँ ना तो क्या क्या लिखने की और मंत करता है कि बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कहानी, बहुत जुदा है औरों से मेरी दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द का कोई कोई कोई इतना नहीं। तो हम चलते हैं एक सॉन्ग की ओर और ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है फिल्म पठान का, ओर हम चलते हैं और फिल्म पठान का एक सॉन्ग आप लोग को हम सुनाते हैं।

0: और दोस्तों, और आप लोग को हम पठान, फिल्म पठान का ये गीत आप लोग को हमने सुनाया है।
1: बलि करे
0: और हम चलते हैं और आगे कुछ पाती होगा, कुछ शेरी होगा और यहाँ से हम कहते हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं प्यार की बात तो करना चाहिए, प्यार की बात तो करना चाहिए, और कहते हैं प्यार की बात तो सदा करना चाहिए। वो मुझसे बिछड़ जा तो जैसे बिछड़ गए जिंदगी, वो मुझसे बिछड़ा तो बिछड़ गए मेरे जिंदगी, मैं जिंदा हूँ पर जिंदा नहीं रहा। तो ये सब बात प्यार में लोग करते हैं और क्या क्या करते हैं दोस्तों, बहुत कुछ करते हैं। बिखड़ा वजूद टूटे ख्वाब सुलगती तन्हाइयाँ, कितने हसीन तोहफे दिए जाती है ये मोहब्बत ने। तो कहते हैं आगे में, ऐसा नहीं है कि अब तेरे जुस्तजू नहीं रही, ऐसा नहीं है कि तेरे जुस्तजू नहीं रही, बस टूट कर बिखरने का आरज़ू नहीं रही। हम चलते हैं बेशरम, ये गीत का नाम है बेशरम। आप सुना जाए ये बेशरम क्या कहते हैं।

0: और फिल्म के नाम पठान है, जिसमें देविका और शाहरुख खान ने काम किया है। और बेशरम गीत हम आप लोग को, गीत के नाम है बेशरम दोस्तों, हम नहीं कहते हैं, तो आप लोग को हमने चला दिया है। और जो गीत हम आप लोग को अब सुनाने जाते हैं वो है नैथिकेल लता जी उदित नारायण का, ये सॉन्ग है तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने।
1: तेरे सामने तुझको देखूं कि प्यार करूं,

सामने और तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ये नैतिकी लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है उदित नारायण के साथ में, उदित नारायण के साथ में।

मित्रों, जरूरी नहीं है कि मुझे सभी लोग प्यार करें। मेरे लिए जो वादा महत्वपूर्ण है वो है सही लोगों द्वारा प्यार पाना। मित्रों, मैं आपको हर दिन के लिए एक फूल और एक मैत्रीपूर्ण शब्द, एक प्रसन्न मुस्कान और आपके कंधों के चारों ओर एक हाथ और एक आंख मारने की कामना करता हूं, जो काम आए। लेकिन सबसे ऊपर एक अंगूठा, यही आशा से कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मित्रों, आपके आंसुओं के लिए एक अलिंगन यानि कुनिफल, आपके लिए एक अलिंगन प्यार और आराम से भरा है एक अलिंगन, क्योंकि कभी कभी ये जरूरी होता है मुश्किल की घड़ियों में एक झप्पी, एक अलिंगन, एक कुनिफल इंसान को जरूरी पड़ जाता है। मित्रों,

सज्जनों, उस परिवार के बारे में चिंता ना करें जो आपको अनदेखा करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे जाने दें और उन लोगों से प्यार करें जो हमेशा आपके लिए मौजूद है, तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। मित्रों, और जो परिवार या रिश्तेदार मेरे लिए गलत विचार रखते हैं, उन्हें मैं अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। परिवार एक दूसरे की मदद और सुरक्षा के लिए बना है, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं, जैसे आप करते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहना, अच्छाई करते रहो। मित्रों, ये आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी साबित होगा।

मित्रों, यदि आप अतीत को पीछे नहीं छोड़ते हैं तो ये आपके भविष्य के उस प्रेम को नष्ट कर देगा जो आज आपको देना था, न कि जो कल था। वो तो बीत गया, बीत गया। मैं अब वो नहीं रहा जो मैं था, जो सब कुछ किया करता था, जो दूसरों को मुझसे अपेक्षा थी। अब मैं वही करता हूँ जो मैं खुद की सुनना चाहता हूँ और अपने दिल की सुनता हूँ। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैं बदल गया हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैंने उस तरह जीना बंद कर दिया है जैसे आप चाहते थे। मित्रों, जैसे आप चाहते थे इस तरह आपको भी जीना चाहिए।

धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता, मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है।

सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य लोक।

दोनों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय। और सुबह हो निकले है तो हम आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और कहा जाता है कि आज का एक दिन आप एक शुभ दिन हुए। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए।

ईश्वर आपके हमेशा खुश रखे। स्वस्थ रखे और मस्त रखे। सभी दुखों से यही कामना है मेरा भगवान से। जिनका जन्मदिन है उसे बहुत सा बधाइयां दिया जाता है। जिस परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लिया है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दिया जाता है। जो अभी निकलने वाले हैं नौकरी की ओर, उन्हें और शुभकामनाएं। और ये मत भूलना, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ये मत भूलना कि उन्होंने इस बात का संदेश रखे थे कि ये मत सोच कि देश तुम्हारे लिए क्या करते हैं, ये सोच कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। जो सफर पे जा रहे हैं तो उनसे कहूंगा कि समय पे उपस्थित हो जाना अपना अड्डे पे। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये तो आपको पता है, माँ सरस्वती को भूलना मत, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और जो हमारे देश में सफर करने को यानी कि वेकेशन से आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत किया जाता है। सभी मेंबर्स जो है फाहोन रेडियो को हार्दिक से अभिनंदन। मैं जो आपके साथ जुड़ गए हैं और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे।

ay si Lagi Lagan. मीरा जो महलों में पली पर बनके निकली जोगी, आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। कहते कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है, कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। और इसमें यह भी जोड़ा जाता है कि धैर्य, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठा आते हैं।

हॉलैंड से और डेनहाग से ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकता है, जो इस समय अपने गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो उन्हें भी गुड मॉर्निंग। और ये कहना चाहूंगा कि जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है।

और इस बात के साथ में लेकर निकलिए। जिस प्रकार से अनूप जलोता जी ने अपने आवास में रखे हैं, कीमत कर अभिमान,

मत कर तू अभिमान, अनूप जलोता जी की आवाज़ में हम सब सुने। सुने वालों, इसी प्रकार से और भी सुंदर सुंदर भजनों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।

और ये बात हम जानते हैं कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार के नियम हैं।

प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सुने वालों, इस बात पे हम थोड़ा से जब गौर करें तो अनूप जलोटा जी ने इतना सुंदर रूप से हमें ये संदेश रखे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन और पानी मिलेगा तभी आप टीका और तिलक लगा पाएंगे। क्योंकि वो उसका मिलाप से जा करके हम तिलक और टीका लगा पाएंगे। और तिलक और टीका का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि क्या आप कहीं सत्संग से आ रहे हो। जैसे कि श्री तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि रामायण में श्री राम जी रघुकुल का तिलक कहलाए हैं। श्री राम जी जो रघुकुल का तिलक कहलाए हैं उस पे जरूर गौर करना। तुम चंदन मैं पानी, सुनने वालों इसी प्रकार से अनूप जलोटा का और जो सॉन्ग भजन कलेक्शन, एक और गीत, एक और भजन जो अनूप जलोटा के हम रखने वाले हैं।

बोल पिंजरे के तोता राम। अनूप जलोता जी की आवाज में

सुनने वालों, कहते हैं कि दिल से लिखी बातें, दिल से लिखी बातें दिल को छू जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं,

और कुछ लोग से मिलकर जिंदगी बदल जाते हैं। सभी को शुभ प्रभात कहते हुए आपका एक मंगलमय दिवस।

अनूप जलोता जी की आवाज़ में हम सब सुने ये सुंदर सा भजन उनके आवाज़ में। हम अभी न्यूज़ और कमर्शियल के ओर बढ़ने वाले हैं।

कहते हैं कि दूध दही छाछ माखन घी सबके एक ही कुल के हो कर भी। दूध दही छाछ माखन घी सब एक ही कुल के होकर भी सबके समीप अलग अलग होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सृष्टा जन्म से नहीं, सृष्टा जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म अपने कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है।

दुनिया के हर एक प्रांतों में सुना जा सकता है। और अगर रेडियो से कुछ कार्य करवाना है, क्योंकि हम तैयार है आपके लिए, अगर आपको कुछ भी कार्य करवाना है, हमारे सभी साथियों इसी प्रकार से अपना सहयोग देते आए हैं। हमारे सभापति जो ऐसा भार अपने ऊपर और हम सबके लिए तैयार हुए कि इतना कार्य को कर सके। अगर कुछ भी आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा करवाना है तो यह कतार का नंबर है 0 2 1 3 6 5 9 8, और दूसरा तार का नंबर है 0 3 6 5 2 2 4 7। और हम अपने जीवन में कुछ कर बैठे, क्योंकि हम आए हैं तो हमें एक ना एक दिन फिर वापसी है। और यहाँ एक सुंदर सा गीत हम चुन करके रखे कि मेरी कर्म माता

रूह थोड़ा से बदल देता हूँ। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और एक फिल्म जो हम शायद सभी देखे होंगे, फिल्म कुली से निकाला गया ये गीत, सारी दुनिया के बोझ हम उठाते हैं।

इस गीत को मैं इस कारण रखा कि कहीं गलती से आप सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पे ना धल ले। क्योंकि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही के यही रह जाते हैं। क्या यही मेरा जिंदगी है? क्या यही हमारा जीवन है? कुछ ख्याल अपने यारों पे। एक फिल्म याराना जो बनाया गया नई खती नई न तख्त

फिल्म याराना से। कभी इस बात पे ख्याल रखे, कभी आज इस बात पे ख्याल रखते कि जो पहले हमारे साथ होते थे प्रिय दोस्त, जो शायद आज आपके साथ नहीं है, पर वो यादगार बनकर साथ साथ है। क्योंकि कहा जाता है हमारे कुछ नहीं बचता, बस वही हमारे कर्म का यादगार के रूप में।

मेरा प्यार। सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत एक पुराना फिल्म 1964 से निकाला गया। इस गीत को सुनकर के जरूर कुछ याद आया होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज पता नहीं आप क्या करने वाले हैं, पर हमारे दिमाग में जो दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक जिनका नाम पॉजिटिव है और दूजा का नाम नेगेटिव। कौन घोड़े को आप ज्यादा खुराक देंगे उसी ओर के पढ़ेंगे।

तो अपने होते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से और कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से।

सभी को एक सुप्रभात। सूर्य को किरणों जो निकल चुके, मत भूलना सूर्य नमस्कार। और मैं हूं संजय, आपके साथ जुड़े हूं

कहते कि जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है। जो अभी चून किए हैं फाहोन रेडियो, तो आपको भी हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है और एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है।

और जैसे कि कहा गया कि जी भर के मीठा बोलिए। जनाब रिश्ते में शुगर की बीमारी नहीं होती है, तो अपने वाणी का मिठास डालिए। अगले गीत जो हमने चुनकर रखे हैं कि तेरी मिठास

सुनने वालों, यहाँ तक था हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा यह रखता हूँ कि आपके साथ जुड़े रहे और कुछ न कुछ आपको अच्छा लगे होंगे। और कहता हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

ಕಮಲ್ ತಾ

सब कुछ सीखा हमने नसी की होशियारी संजीव सचदेवा से, ये इंस्ट्रूमेंटल हम यहाँ से सुन रहे हैं। आपके लिए पेश किया जाता है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जो लाइव एंड डायरेक्ट आपके कानों तक आपके घर तक लाया जाता है।

कहते हैं कि कम लोग हो पर अपने हो, कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी है कि जो भीड़ चाहिए। और जो दिल के ख़ास होते हैं, जो दिल के ख़ास होते हैं, वो हर लम्हा आपके पास होते हैं। आपके लिए यहाँ से सुनाएंगे अलीशा चुनोई जी ने कि मेड इन इंडिया।

मेड इन इंडिया सुनाई हमको अलीसा चिनाई जी ने। और यहाँ से आपके लिए एक बार फिर खूबसूरत गीत चुन कर रखी हूँ कि चांदी की साइकिल सोने के सीट, क्या बात है।

जी हाँ आओ चले डार्लिंग, चलो डबल सीट। फिल्म भाभी से निकाला गया है और सुनाए हमको नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल जी, और म्यूजिक डायरेक्टर इसमें है अनु मालिक जी। आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

आप साथ साथ कई गाना चलने चाहते हैं, पर वही चलेगा जो यहाँ पे इशारा होगा। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। ये थोड़ा गंभीर है पर सही है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। और मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार

इस बार हम सुन रहे इंस्ट्रूमेंटल सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, वही मशहूर इंस्ट्रूमेंटल संजीव सचदेवा के आवाज में। और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए कि मधोश दिल की धड़कन, लता और कुमार, लता मचेशकर जी और कुमार शानू की आवाज़ में।

जब प्यार किसी से होता है फिल्म का नाम है, हाँ जब प्यार किसी से होता है फिल्म का नाम है। नेखंतीन अख्तर नेखंतक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है और सुनाए हमको लता जी और साथ में सोनू निगम जी, नहीं सोनू निगम नहीं, कुमार शानू जी। जी हाँ सुनने वालों, लव इज इन द एयर। ऐसे कई दिलों हैं जो खुश में हैं और प्यार में हैं, प्यार में भरे हुए हैं। यहाँ से हम सुनेंगे हवा हवा हसन जहांगीर की आवाज़ में।

रिश्ते कभी नहीं बदलते, रिश्ते कभी न बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। रिश्ते कभी न बदलते, रिश्ते निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से दुनिया नहीं बदलती, बस जीने के बस जीने का अंदाज बदल जाता है। कहती हूँ कि रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे। किसी के पीछे पढ़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है।

कितने अच्छे फरमाए कि यार के हर खुशी हम सब की हर खुशी। अभिजीत जी ने सुनाए, एल्बम का नाम है तेरे बिन।

यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं सुनने के लिए पोस्टर लगाओ तो। पोस्टर लगवा दो बाजार में,

तेरे मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है, तेरे मेरे बीच कुछ आखरी नहीं है, सिवाय सिवाय आखरी सांस के। पोस्टर लगवा दो बाजार में फिल्म का नाम अफलातून।

असलम गुंडा राज से निकाला गया ये गीत। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ये बहुत गंभीर है फिर भी, कि ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, दुनिया वालों का पसंद तो पल भर में बदल

टाइटल सॉन्ग जो हमने मिलकर और सुने हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का नाम भी यही है और लता जी की आवाज़ में हम सपने और प्यार के साथ सुने हैं आज इस खूबसूरत दिवस में। हर पल में प्यार है लीफल स्टार्स, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशियां हैं, जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें हैं।

0: मैं कहती हूँ हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना ज़रूर से गाएगा, अगर ज़ोर से नहीं तो ज़रूर से गुनगुनाएगा, मन में मुस्काएगा। तो सुंदर सा गीत यहाँ से इस कार्यक्रम में आपके लिए चुन चुन कर और लाया गया है, तो यहाँ से हम सब मिलकर और इसी ही तरह सुनते ही चले जाएंगे। हम आपके लिए यहाँ से चुन के रखी हूँ, सुने वालों, तुम जो मिल गए हो, और ये गाए हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा। जी हाँ, ऋषि नित्य प्रज्ञा, ये सुंदर सा गीत जो कॉफर किया गई थे वो गाई है, तो हम यहाँ से सुनेंगे उनकी आवाज़ में।
1: क्रेजी डिवोटी के पागलपन की पराकाष्ठा। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स नीड्स टू बी सेड अबाउट दिस सॉन्ग।

नित्य प्रज्ञानंद से जो हमने यहाँ सुने सुने वालों, और ये गीत जो अपने डिवोशनल डिवोशनल चुन में जो हम सबके दर्शाया है, तो सुंदर लगा कि एक गीत भी आप कई रूप से इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगा सकते हैं किसी तरह में, जैसे कि प्रभु से जोड़ सकते हो या अपने प्रेमिका या प्रेमी से जोड़ सकते हो या कोई भी।

0: एक और सुंदर सा गीत जो उनके मुखारविंद से हम यहाँ से सुनेंगे, ऋषि प्रज्ञानंद की आवाज में।
1: ज्ञान चर्चा करता हूँ, ध्यान करता हूँ खुद और सिखाता हूँ लोगों को। सेवा का समय हो तो भरपूर सेवा भी है, लेकिन मेरे जीवन को बड़ा सुंदर बनाने वाला ये जो भक्ति का गाने का एक जो रस गुरु कृपा से जो मिला है, मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि मैं गा पाता हूं। मेरे गुरु जी का स्मरण करके जब कोई राग पुकारता हूं तो टेक्निकली ट्रेंड गला तो है नहीं, तो सुरों में कई बार ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो भाव मन से निकलता है वो मुझे लगता है आई फील सो ब्लेस्ड सो दैट आई एम एबल टू गिव सच हैप्पीनेस, सच जॉय, सच डिवोशन टू पीपल अराउंड मी। इस गाने के जो शब्द हैं, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, आई फील दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टू।

तो ऐसे सुनने वालों आप सुनते हैं कि गीत जो है तो आप जैसे हमने कहा है कही है कि आप अपने इश्क की भेटी भी कर सकते हैं अपने प्रेमिका प्रेमी के या जो जो जिस समय पे आपके दिल के पास हो आप उनके लिए गा सकते हो पेश कर सकते हो।

अपनी ज़मीन, अपनी ज़मीन, अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी में कब मिलती है, मांगने से ज़िंदगी में कब मिलती है, खुद खुद की अपना नया इतिहास बस पैदा करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कुछ ऐसा करो कि आप जान पहचान में बने रहो। तो यहाँ से हम इस बार सुनेंगे पंकज उदास जी की आवाज़ में कि निकलो ना बेनकाब

तो पंगज उदास जी ने कहते हैं कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। तो ये आप पर निर्भर है कि आप नकाब या बेनकाब पर चलते हो। आप इस पर भी कपड़े डाल सकते हो या बगैर कपड़े यानी कि नकाब यानी चेहरा ढक कर, और भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि अपना चरित्र पे भी आप पर्दा करते हो या ना पर्दा करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये इस पर आप कैसे आप इसे कॉन्टेस्ट देते हैं, तो ये आप पर निर्भर है ना। ख्याल ओक फॉर मई तुर्लक।

मशहूर फनकार पंकज उदास से हमने सुने तो ये इनकी इनकी सवालों का जवाब तो मैं तो ये देना चाहती हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बार हम सुनेंगे भाई बहन के आवाज में नेहा और टोनी कक्कर के।

0: जी हाँ, तुम भी।
1: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 3 2 7 4 4 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 2247.

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी तो सबका बेड़ा पार करते ही हैं, इसलिए जो हरिओम शरण जी ने बड़ा अच्छा और मधुर वाणी में जो गाया है उससे सब लोगों के एकदम चित्त में आनंद की अनुभूति होती है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। मन तू उदास क्यों होता है, चिंता मत कर, राम जी अपना बेड़ा पार करते हैं। तो आज जो हमारा विषय है उसकी बात करते हैं। आज का जो विषय है बड़े ध्यान और मन पूर्ण सुनने का विषय है कि किस प्रकार से एक पढ़ाई से और किस प्रकार से व्यक्ति ऊंचाइयों तक छूता है, उसी के संदर्भ में आज की जो बातचीत है वो रहेगी। एक लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, सारी जिंदगी फर्स्ट आया, साइंस में हमेशा 100% स्कोर किया। अब ऐसे लड़के आमतौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं, सो उसका भी सिलेक्शन हो गया। आईआईटी चेन्नई में वहां से बीटेक किया और वहां से आगे पढ़ने अमेरिका चले गया। वहां से आगे की पढ़ाई पूरी की, एमटेक किया, फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहां अच्छी नौकरी मिल जाती है। सुनते हैं कि वहां भी हमेशा टॉप ही किया, वही नौकरी करने लगा। बताया जाता है कि 5 बेडरूम का घर था उसके पास, शादी यहाँ चेन्नई से ही की, एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। बताते हैं कि ससुर साहब भी कोई बड़े आदमी ही थे, कई किलो सोना दिया उन्होंने अपनी लड़की के दहेज में। अब हमारे यहाँ आजकल के हिंदुस्तान में इससे आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक आदमी और क्या मांग सकता है अपने जीवन में, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, अमेरिका में सेटल हो गई, मोटी तनख्वाह की नौकरी की, बीवी बच्चे सुखी सुख, इसके बाद हीरो हीरोइने सुखपूर्वक वहां की साफ सुथरी सड़कों पर भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में सुखपूर्वक विचरने लगे।
1: तो राजेंद्र जी, इसमें तो अभी आपने तो कोई खास बात नहीं किया।
0: हाँ, इसमें अभी खास बात आगे आने वाला है।
1: तो क्यों ना हम पहले
0: एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और फिर खास बात की ओर बढ़ेंगे।
1: क्योंकि ये संदेश तो इसमें कुछ खास बात नहीं लगा। लोगों शायद सोच रहे होंगे कि क्या सुना रहे हमारे मास्टर जी, पर इसमें जो अभी गहराई में हम सब जाने वाले हैं उसके बारे में आप सोचते रहना, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम बाकी है। तो दोस्तों,
0: अभी तो प्रोग्राम बाकी है और जो नगमा है उसके बाद ही आएगा,
1: नगमा के बाद आएगा। तो दोस्तों, एक गीत की ओर बढ़ेंगे और हम अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: मास्टर जी, ये आप जो सुनने वालों को संदेश दे रहे हैं अभी, उसमें कुछ कुछ गर्मी नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है, तो आप बताएं कि आगे कहानी क्या बनती है।
1: हाँ, जो अभी तक संदेश है इस कहानी का वो यही है, एक नॉर्मल संदेश है जैसा कि हर किसी के साथ होता ही है, लेकिन आगे जो कहानी पे मोड़ आने वाला उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब जरा कहानी के पहले पात्र पर दोबारा आ जाते हैं। तो आप उस इंजीनियर लड़के का क्या फ्यूचर देखते हैं? लाइफ में सब बढ़िया ही दिखता है, पर नहीं, आज से 3-1 साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सब परिवार आत्महत्या कर ली, अपनी पत्नी को और बच्चों को गोली मार कर खुद को भी गोली मार दी। What went wrong? गलत क्या था? आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा जस्टिफाई किया अपने इस कदम को, और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में उनके इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने स्टडी किया। व्हाट वेंट रॉन्ग? हुआ यूं था कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई, बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए, और फिर भी जब नौकरी न मिली, मकान की किस्त जब टूट गई, तो सड़क पे आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पे तेल भरा, बताते हैं साल भर ये सब बर्दाश्त किया और फिर अंत में खुदकुशी कर ली। खुशी खुशी और उसकी बीवी भी इसके लिए राजी हो गई। खुशी खुशी जी हाँ लिखा है उन्होंने कि हम सब लोग बहुत खुश हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया गया कि एक्सपेक्ट्स हैं दिस मैन वाज प्रोग्राम फॉर द सक्सेस बट ही वाज नॉट ट्राइंग हाउ टू हैंडल फ्यूचर। मतलब कि केस सक्सेस की तरफ है लेकिन फ्यूचर में कैसे हैंडल करना है, यह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था पर इसे जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए।
2: तो राजेंद्र जी,
1: एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे की कहानी जारी रखेंगे।
2: राजेंद्र जी, जरूर हम एक गीत रखना चाहता हूँ, पर इस बात को सुन करके मुझे भी थोड़ा गर्मी आ गई, क्योंकि हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि वो और जा कर के खूब पढ़े लिखे और जा कर के अपने और यानी कि समाज में कुछ बड़ा बने, पर ये जो बात आप कह रहे हैं कि सफलता और असफलता, जो ऐसा भी कितनी फिल्में बने हैं जैसे कि द्री इडियट्स आदि जो बना करके और उन्होंने और ऐसे और भी फिल्में बने हैं और जिसमें हमें वो सीख मिलता है कि शायद हमारा एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा है अनुराधा जी कि नहीं?
0: जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें थ्री इडियट्स पिक्चर देखकर पता चलता है कि माँ बाप बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसी ही वजह से बच्चे भी, पढ़ाई तो अच्छी बात है पर वो उनमें वो एक सफलता प्राप्त करने का, वो मार्क्स लाने का एक अलग ही भूत सवार हो जाता है और वो इतना उसमें उलझ जाते हैं कि वो जीना भूल जाते हैं, और वो अगर उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। आप मास्टर जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: हाँ देखो, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है और जिसके जो समय के अनुसार सब कार्य करने चाहिए, क्योंकि जैसे हमने सब लोगों ने देखा है कि जो सब लोग चाहते हैं कि अच्छा ही अच्छा हो, अच्छा ही अच्छा हो, खराब कभी ना हो, लेकिन जब तक हम लोग अच्छा और खराब के बीच की दूरियों को देखते रहेंगे तब तक उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि कभी अच्छा समय भी आता है, कभी बुरा समय भी आता है, लेकिन जो व्यक्ति उसको हैंडल कर सके बुरे समय को, वही सक्सेस की ओर बढ़ सकता है।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने हैं और ये संदेश जो हमारे मास्टर जी भारत से जुड़े हुए हैं, इसमें बबली जी भी कुछ रखने वाले हैं कि बबली जी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है अपने बच्चे के ऊपर।
1: मेरा तो ये कहना है कि थोड़ा बच्चे के ऊपर भी छोड़ना चाहिए कि बच्चे क्या मांगते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा उन पर जोर नहीं देना चाहिए।
0: जरूर, ये बात है कि ज़्यादा जोर नहीं रखना चाहिए, पर अनुराधा जी, जैसे कि मास्टर जी कहते कि कोई कोई बच्चे में ये भी होता है कि वो मार्क्स सबसे ऊंचा लाते हैं, यानी कि एक ऐसा होता है कि वो ये भी कहा जाता है कि वो जो क्लास में बैठते उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं।
2: देखिए, इस बात से मैं कहीं पर सहमत इस बात पर नहीं हूँ कि लाइफ में बच्चों को खाली मार्क्स ही लाने चाहिए, बिकॉज़ वो बच्चे मार्क्स के चक्कर में और लाइफ जीना भूल जाते हैं। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, लाइफ में उनके और भी कुछ हैं, और पढ़ाई अच्छी बात है, मार्क्स लाना भी बहुत अच्छी बात है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्क्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा उनका एक और व्यक्तित्व है। वो हर कोई बच्चा मार्क्स पढ़ाई में जरूरी नहीं कि अच्छा हो, उसमें क्रिएटिविटी हो सकती है, उसमें और भी गुण हो सकते हैं। तो हमें माँ बाप को उनको बढ़ावा देना चाहिए कि ऑलराउंडर बने, कोई जरूरी नहीं कि मार्क्स ही मार्क्स लाइफ में सब कुछ है।
0: यहाँ कहा जाता है हॉलैंड में कि हौक बखाफ्त होते कुछ बच्चे होते हैं ना, और पर यह संदेश के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ जिसे इससे लोग इस बात को सुन करके जो मास्टर जी संदेश रख रहे हैं कि इससे आप जरूर ध्यान दें। हम एक जैसे कि हमारे मास्टर जी ने अनाउंस कर चुके थे कि एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, तो हम अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।
3: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: सो अभी जो गाना हम सुन रहे थे थ्री इडियट फिल्म से सारी जिंदगी मर मर के जी ली, तो सारी जिंदगी मर मर के नहीं जीना है, सारी जिंदगी खुशी से भी जीना है। यही जो संदेश इस गाने से मिलता है कि कुछ चांस जो है खुशी के पल रहने चाहिए जिंदगी में। तो हमने जो आज का जो प्रसंग है उसमें दो मोड़ तो आ गए। एक मोड़ तो है कि पढ़ाई में अच्छा था, विदेश में गया, अच्छी नौकरी किया, बीवी बच्चे वहीं सेटल हो गए। दूसरा मोड़ में उन्होंने आत्महत्या कर ली और जो असफलता थी उसका सामना नहीं करना सीखा। लेकिन आइए अब जरा सुनते हैं तीसरा मोड़ कहानी में आता है, तो उसके जीवन पर शुरू से नजर डालते हैं। बहुत तेज था पढ़ने में, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, कोई गलती ना हो उससे। गलती करना तो यूं माने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे क्योंकि पढ़ाकू कम ज़्यादा होते हैं, सो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है बेचारों को। ट्वेल्थ करके निकले तो इंजीनियर कॉलेज में बोझ लग गया, पर वहां से निकले तो एमबीए और अभी ही पढ़ रहे हैं कि मोटी तनख्वाह के लिए नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेदारी, यानी बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त ये दुनिया कितनी कठोर है और ये जिंदगी अलग से इम्तहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं, उसे वहाँ कितने नंबर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े, ऊटपटांग, और रोज इम्तहान। इम्तहान यानी परीक्षा, एग्जाम। रोज जिंदगी एग्जाम लेती है, कोई डेट सीट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आइए इस व्यवस्था को बेहद समझदारी से परिवर्तन करना चाहिए। सफलता के साथ विफलताओं का सामना करने का जो जज्बा भी बेहतर ढंग से अपनी पीढ़ियों में पैदा करना चाहिए। जीवन जीने के सलीके सिखाएं, न की पढ़ाई केवल, आगे जो जीवन है उसको कैसा जीना चाहिए। गर्मी है तो सर्दी भी है, बरसात है तो ठंडी भी है, आंधी तूफान भी है तो मौसम अच्छा भी है। हर प्रकार से जिंदगी जीना, इसी प्रकार जिंदगी भी होती है। और सफलता की जो अंधी दौड़ है उसमें भागना नहीं, उसको समझना जरूरी है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को जो सीख मिलती है यही मिलती है कि जिंदगी किस प्रकार से जीना चाहिए। तो जिंदगी जो जीते हैं अच्छे ढंग से वो तो निकल जाते हैं, और जो नहीं अच्छे ढंग से एक ही तरफ की जिंदगी जीते हैं उनका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संजय जी आप बताइए कि आपकी जिंदगी में किस प्रकार से मोड़ आए। पहले आप सुरिनाम में थे, फिर नीदरलैंड्स में आए, वहाँ पे आपने जब शुरू किया तो बड़ा समस्या हुई। आप बता रहे थे कि उस समय किस प्रकार से जॉब करते थे, कैसे करते थे, और फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और आज जिंदगी एकदम खुशहाल है। रेडियो में जो प्रोग्राम करते हैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि जिंदगी जीने का जो हमारा प्रोग्राम है ज्योति का प्रकाश, वो भी यही सिखाता है कि ज्योति जो ये जीवन है, ज्योति यानी जीवन, और इसमें जो प्रकाश है उजाला है, उससे अपने को नहीं दूसरों को भी शिक्षा मिलती है, और यही हमारे लक्ष्य भी। तो संजय जी आप थोड़ा सा कुछ इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी। बात यह हो जाता है कि शायद हम अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट बहुत ऐसा करते हैं कि वो क्लास का सबसे बेस्ट बच्चा बने, वो अपने जीवन में तरक्की करते रहे और जा कर के और बड़े बड़े और नंबरों से पार करे। पर हमें और अपने बच्चों के लिए हम शायद ऐसे सोचते होंगे कि अपने बच्चों के वास्ते सब कुछ खरीद कर दे सके। कभी समय पे जब 12 साल के तो नया साइकिल, जब 16 साल का तो नया मोटरसाइकिल, और जब 18 साल का तब नया गाड़ी खरीद के दे सके। और उसे जा कर के शायद इस बात को नहीं मालूम हो पाएगा कि कैसे पूरा जिंदगी जो एक सर्कल होता है ना, कभी कठिनाई है तो कभी, और जो बढ़िया समय भी आ जाता है, तो उसे इस सीख शायद हम लोगों ने अपने बच्चों को वो सीख नहीं दे पाते, क्योंकि जो पहले कठिनाई से बनाया गया, जो पहले हमारे बुजुर्गों जो 150 साल पहले भारत

और गाड़ी चला रहा था और गाड़ी इतना स्पीड पे था और चलो देखो आज और बेटी और बेटा नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ऐसा चीज भी हो जाता है। तो उस बात पे ये हो जाता है कि हमें सब कुछ जरूर देना चाहिए अपने बच्चों के, पर ऐसा दे ताकि वो भी सीख सके उसमें उसका और उसमें गलतियां जो हुए, जो उसमें कमताई हुए उसे भी वो जाने। अगर हम शायद सब कुछ बहुत सा सिंपल से और अपने बच्चों को दे और एक्सपेक्टेशन भी उसी प्रकार से जैसे कि ये संदेश में आप हम सबको सुनाए तो रास्ता भी यही निकलता है। तो राजेंद्र जी हमारे साथ, अनुराधा जी शायद भी कुछ कहने वाले हैं और बबली जी इशारा करते हैं कि न्यूज़ को और बढ़ना है। दूसरा और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे डायरेक्टर जी को भी हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। तो राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत और चला देते हैं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

और दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वस वाला मो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं, और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

खूबसूरत लग रही है।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरे राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार भरी पैगाम। दोस्तों आज देश का मंगलवार है, 26 तारीख मई हो चुका है, सेशन 20 तक मई घड़ी को देखा जाए तो नीतन ओवर 11 हो चुका है। यहाँ से आपको हम देश विदेश के समाचार लाइव सुनाएंगे दोस्तों, शाम को 6 बजे आज, यानी कि नाम मफ्रो रहीम बख्श अभी आएगा एन तोट फनफ एन यूर, वो अपना प्रोग्राम को करेगा 3 बजे तक। उसके बाद 6 बजे इस प्रोग्राम को हम हरहाल करेंगे जो इस वक्त हम अप ले रहे हैं, यानी देश और विदेश के

और दोस्तों तू धड़कन है के बाद हम तुरंत चलते हैं और चलते हैं अपने सूरीनाम की ओर। आप लोग को पता है हमारे यारों की यो लीफ टाइट है, पेंशन लीफ टाइट जोन है यहाँ हॉलैंड में, कहाँ 5 तक से 7 तक कर दिया। अब ये जो यहाँ के यानी कि येते है रोबियन मांगे है 7 तक करे दोस्तों, इसके बारे में यहाँ के बोंद जो है बहुत नाराज है, बोले दित मुत वेख फंद ताफल, तो ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा और आगे में आप लोग बताएंगे। लेकिन दोस्तों बात ये है कि हमारा सूरीनाम में जो है वहाँ के मिनिस्टर फ्रॉम बेनेलांस साके जो है रखेरिंग जो है और वो सब मांगे हैं, वहाँ पर भी जो लीफ टाइट है यानी कि पेंशन लीफ टाइट जो है इस समय पे वहाँ सस्तक है, सब मांगे सूरीनाम में भी फरहूख करे फनाफ तुए ये सस्तक तो फेवन सस्तक यार मेंशन। तो ये सब सूरीनाम देश में सब मांगे हैं पेंशन लीफ टाइट भी फरहूख करे। और एक बारे में जो है जो बारे में हैगा पेंशन लीफ टाइट कॉन्क्रीट गफ्राग ओम आउट टू वर्कन फन 62 आन 65 यार और मिनिस्टर फ्रॉम बुटनलैंड्स साका जो है मरीनस बी हैगा फॉरब्राइट करे हैगा वेट गिविंग फन पेंशन फन 60 यार तक आन फरहूख मेंसे कॉन्क्रीट इज आन अ टीम फन दिस गफ्राग कि कैसे ये पेंशन ग्रेंस हुआ कैसे काम होगा। बोले हैगा से वर्कर न्यू ऑन एट वेट वे सिखिंग वे तो मांगे से अपन फ्रेंडर करे। बोले कैप से ओ गफ्राग और मेट माचखपलक मेनन फेल मार ओक द बोंडन तब ट्रैकन जो ने डेमोस्ट्रेशन ना हुए बोंड के इनमें का बोले है व्हाट वर लेयर आई द एरफारिंग फ्रॉम अंदर लंदन जैसे फ्रांकराइक भेले कि वहां पर सबन डेमोस्ट्रेट करिसेगा और यहां पे भी मांगे बोंड से बातचीत करे जो डेमोस्ट्रेशन ना आवे और लीफ टेर ग्रेंसवा जो है और फरहूख हो जाए। और बोलेगा बोले लीफन एंड यंगर आई सीन और बोले वार्डोर हेड लेग आउट ऑफ द ओवरहेड कैनस वेखोइट। बोले है अन मेंसे दी डिस्पेंसेशन फ्रागन ओम ना 60 यार दूर तो कुनन वर्कन सेन बदूलिंग इज दार ओम ओम दिट यार नोग हेड फर्स्ट फोरस्टेल इन दे एना बहांदल तक क्रेगन। तो सूरीनाम में भी सब मांगे चढ़ावे हुआ के आदमी नो क्रिटिक लीवर करे है दोस्तों। Maar ik vind namelijk de gezondheidszorg moet daar eerst veel verbeterd worden. Want het moet gewoon ook snel maar jij bij jou. Aap loon jano hè. Karen ki gewoon gezondheidszorg joon hè Suriname deze me is niet zo goed. Waardoor mensen eerder gaan ze overlijden mensen. En ze mangen 70, de 70 kardé. Is de kans groot mensen dat heel veel mensen hun pensioenleeftijd niet halen. तो हम चलते हैं भैया सिमोंस के ओर। ये बड़ा प्रॉब्लम है देसवा में यार, हम तो से कब बताई दोस्तों। और इस सिमोंस से बुढ़िया हो गए है और जाए के इतना फ्रांतोरलक है अस प्रेसिडेंट जाए के कुर्सी पे बैठ गए है वार दौर इन ना चलाई पावे भैया बोली सेगा से से से हार्ट ने ने ने बहुत चीज ओके घसकावे पर गया पासपोर्ट ना कर पावे है waardoor deze mevrouw nu rust niet heeft, als jij een keer lelie zegt, wat er een probleem is waar mee, doen kitra rustig haar, en ze weet ook niet hoe ze dit moet gaan oplossen. Ja, per die collega, 25 mei ontdekten we dat de NDP 18 zetels had in plaats van 23 zetels. Bolle hij je op heil hè? 25 tarik mei ke verkiezing te bolle hamlo de klik hamlo ke khali 18 zetels hè in plaats van 23 zetels. Aur ik kom er over 2 jaar weer op terug. Op dit moment is dat niet van belang. Maar bolle doe je maar eens baat hem ik er baar hem betaalbe bolle hamlo sochik hamlo ke 23 zetels maar bolle khali 18 आगो है बोले दुई बार इस बात एकर बारे में हम लोग फिनो आबे एनडीपी के बारे में बोले हैं फोल्कर सिमोन मुझे एनडीपी डीलन में तो वास है तुन हाथ
और उनके सब के लिए के काम करे परवान फान कोलिशी में दुनिया भर के रे यानी कि पोलती का पड़ते ही ओमा बा और बहुत जुगु जुगु हमारे सब मांगे अपन ऐखा बलांग करे और सीमों सब के कर ना पावे तो बहुत चक्कर में पड़ल है। और एक तो देश इतना छिछा के लेदर भैया बतावे फोल्क एनडीपी फोर्सिटर बोले हैगा बोलेगा योंगरन है बन खसे असिस्ती मुस्किन की एक भी लाख वेर एक बिनन और खान दे देना हेट हीव तीन यार खदीत ओम फान अन बपाल पिंट नार अंदर पिंट कोमन सो दा साकन बेटर कोंदन फिंशुनेरन वो हूपन दात वे बेद दे देखालिजेरन ओंसे बस्टूरसिस्टीम कुनन फरबेटरन एन दात वे हीर फोर गेन तीन यार नोदग हैबन हेट कान एर्दन एन वो बगेनन हेट दित यार बोले बहुत इन खविकल्त है। एक बारे में सीमोंस बोले है हमारे दोस्तों अतिस नित माकलग सुरिनाम इस इन अनहेल ख्रोत प्रॉब्लेमें से और लीनिंग के ऊपर लीनिंग सब ले हुए भैया तो अबे इसके बारे में हम आप लोग को और बताएंगे। अब देखो यहाँ पर काम बताए गए है बताए गए भैया बहुत जबर सुरिनाम में रेबीज बिका है भाई रेबीज वहाँ जाए के किनियो जैसे कि दुकान में जइयो तेगो बोरू किन लियो गो कोला किन लियो ऐसे सुरिनाम में रेबीज आदमी हुआ बेचे है बताए गए है मीडिया पे और कितने हैं बिना रेबीज के चलावे है और चलेबो करे हैगा बिना रेबीज तो दारू ढकोल के चलावे है। तब देखो भैया एगो आदमी दारू पी के एकदम नशांद रहा ऊपर सुकर रही बवैस ना मारे जाए कि एक मिला के बड़ी फेस एकदम छित्तर के बित्तर होगी ओकर बाद में जाए कि वो पेड़ में मारी ओ तो एकदम तो उतर लॉस हो गए। अब सोचो भैया के बड़ी फेस किन के लगावे एक परी नानी यही ना ट्वेन तक यार के लौंडा यहाँ पे बतावे गए हैगा बोले हैगा वानिका की बात है लेने आँख के बात है गए ले गो बड़ी फेस में मारी से एगो पेड़ में मारी से और रमिया बहुत जोर चलावत रहा तो रही बवैस ना रहा ऊपर से दारू ढकोल के चलावत रहा। तो यहाँ बतावेगा रोन ट्विन तक फाइव एन ट्विन तक आठ बजे रात के साढ़े आठ बजे रात के मेल्डिंग आयल है एगो पाँच नंबर नीखने नीखन तक हैगा वहाँ पे ओतो जाए के बॉक्स भाई लेगा और बड़ा फरकलार करी से उज्जर उज्जर ओतो है ब्रीफ भी उस पेड़ में मार के और टंगल है और आठ नंबर के बात है लेने आख रही दिन आठ नंबर के बात है और बोल स्टिल तंत एगो क्रॉइस पेंट जैका नाम बा हरिदत्त लालिस रात के और बताएगा रनमिया इंडम नशा सांद्रा नाम का खीफंस द मन वेट आन खाओदन भले मरल ना भाई और जाए के एक के पकड़ी से और सिकन है इसमें गले बहंदलिंग के इन ट्विन तक यार के लुंडा और जाए के इतना बड़का अरेडिंग करी से दोस्तों बहुत दुख के बात है। सुरिनाम देश में ऊपर से दारू पिए हैं ऊपर से ओतो चलावे है तो कैसे अब देखो भैया हाँ ये रखे रेंगवा एक तो पैसा ना देसुआ में बड़ा जोर बड़ा सिलिए घूमे भैया देना अलवेर देना बोले एकर हम मंगल ऑफ हेल्दरिंग तुम बताओ कि तुम लोग कितना पैसा ले ले बड़ा सिलिए जा तो कहानी कहाँ कहाँ तुम लोग जा है छू छुआई जा है का कि काम से जा एकर बारे ऑफ हेल्दरिंग मांगी सेगा जेनिफर सिमोन से जो वूर्स डाक के फिनो ब्राजीलिया गए डोमिनिकान से रिपब्लिक गए है जेमा एगो देना लेत अमारानी जरबंदन जो है स्टार्ट सोफ के बोले है बेतल आंसर रही से बोले बहुत ढेर है अपली फ्रॉम फॉर सुरिनाम बोले हम लोग का कुछ फायदा ना है और तो लोग घूमे हैं बोले खप्लेंदर है ब्राजीलिया के प्रेसिडेंट में तो दिल खास ईफान मिनिस्टर है सो आप रही से निकल आई और ही गैला भैया जहाँ होकर आदमी भी गैला घूमे और बोले खून गैला बके हुआ नू तुले करत रहा वरफान सिमोन बोले रहा होकर आदमी रखेरे में एक को भुन ना बमुई करेगा मैया खाट वेल ना हम लोग नू तुले माँ के एनांद्र डिंगर जरबंधन जो है बैतलान से साख के बोले मिसी आंसी kosten zijn hoog. Bolle zij vraagt zich af wat concrete voordelen zijn van de reis van Brazilië. Zeker omdat de afhankelijk geplande ondertekening van de memorandum van of de onderstanding over de maritieme samenwerking zou zijn teruggebracht tot een letter in intent. To hier pe betawe hè minister Gaila, verluid minister LVV Gaila, TC
zeeteken gela, zo zavoken gela, defensie gela, hele delegatie gela, hoe meer bij jou met je naar heen. Begrotingsposten, de reis wordt betaald. En waarom de regering hierover geen antwoorden aflegt bij Nationale Assemblee? Bulletulo, het rijder door jij groep barbekitulo, nabatawe kakre ja he. Bullet ik er waarom tulk je heen verplicht, ja pe. Batawe ke, bullet zo werkt het niet, zo gaat het mensen. और यहाँ सीमोन भैया सीमोन बोले हम लोग चाटा में बाटी ना लेतर लग के बात बतिया है किसी नाम में इतना बरसा भले बात चले है मोदर पुल के बारे में भैया प्रेसिडेंट सीमोन बोले वो क्यों नहीं मोदर पुल इन इंस्टा फरांदर इन अनखलास देर ड्रिंक वाटर बोले देशवा इतना चाटा में है और बोले थोड़ो एक गिलास पानी मुके हम लोग सफा कर पावे माँ वेल बोले चलत रहे बोले मोकिंग कास्ट तसीसी वो कब केंकी करिए प्रेसिडेंट बोले मॉडल पुल एक घंटा बोले बोले कि एक रोज पे हम लोग ना प्रॉब्लम ऑप्लोस कर पावे अब 25 तारीख मई के हिंग स्टार्ट्स ऑफ स्टार्ट्स होफ एगो सिचुएशन अरे यार एक बारिश होई के 25 मई के एक बारिश होई के देशवा में लेकिन अब तक कुछ मोई ना भइल है सीमोन बोले हैगा हम लोग थोड़े एक बारिश में दो अच्छा मोई कर पावे बोले फालिता वेसल कुर्सो स्टेबल कर ले बके उत चांस संतोखी करके गए रहा अमदा तो के रिजर्व कास में पैसा धर दे रहा तब उस स्टेबल भइल है और यहां सीमोन नाम बनावे फरागा उड़ावे कि हम स्टेबल कर ली है ओक इस स्टार्ट में अंदर मनीर फन वर्कन बोले 300 RVC सेगा और RVT सेगा ऑन द बीटर द लातन फंक्शनरन और हम अगले जाने कौन सी फंक्शनरी सब करे हैं फर्दर व्हाट इट ओक एनालिसिस फन स्टार्ट बिड्रेवन कमांड और बोले हैगा अंत पर नेचुरली मैं कि ओक एन ब्रिक कोमन अर्गियाना बट दैट इज एक्ट नीट हार्ड प्रीमियर डूल बोले ब्रो किया मांगे बनावे मां बोले ओकर डूल ना है एक एक वर्कन एंड आर सेकंड स्टेप फॉर स्टेप द verbeteren और जो संतो की बोला था स्टेप फॉर स्टेप अब वही वर्ड तो अब ई खबर करे है बोले हैगा एगो ब्रुकी बनावे गयाना से उनी केरी से बोले यार कपोत है बर हम एंड द बास इज टू लेगन सो दो दैट एक द अब बताए सो दैट वे इन द कोमेड पीरियड रिपेयरर रास्ता सब टूटल है भैया बरका बरसे सब बुड़ल है और बोले हैगा सीमोन ऑन देखते कि ओकर पड़ते उबरसिया 10 से 23 से इतल मार्शल 18 को खाली पाई से दार ऑफ साल से एक्टर पास ओवर ईयर ऑफ टू बोले बतियाए कब बता रही बाकी प्रेसिडेंट तो बाटे ना जब प्रेसिडेंट बाटे तो देशवा तो मोई कर ने मफ्राउ सीमोन प्रेसिडेंट ने एक साल ये अब ना बोले है संतोखी के कसूर है ना बोले वो बतिया दोस्तों ऐसे बतिया है अब देखो भैया का बोले देना लीडर जो नहींगा उस सब के फरहोर होवे है हाँ ससोमो हार जो भाई बड़ा प्रॉब्लम है कई मिलियन यहाँ बतावे वो हड़पी से या दराई करी से पिकर बारे में फरहोर भैल है रियाद नूर मोहम्मद भी भैल है और का बोले हुफदराज के बकीफी हुफदराज तो अबे ना भैल दूर से बातचीत करे लग गास पानी पियावे हैं और बोले हम कुछ ना कर ले कहे तो तू भगल बाटे एगो चोर हरदम लुका है चोर ना रही है आओ देशवा में अपन साख लड़ और यहाँ पे बताए सोमो हार जो ओफर फरवेटर योरदान एकला थे फोर हरिकनिंग पेयल के को तोपर ब्रोंटो अपी गए है भैया बोले फरवेटर पॉलिटिके मूसी फन को लिखा देना वार्डन उक अबो पार्लियामेंटारियर योरदान दैट इज फॉर रीक ने और बोले हैं एक ने ने यानी कि अबोब के फोर्स सेटर से बोले हैं एगो इंटरव्यू पे बोली सेगा ब्रुनस्विक बोले तू अपने मंगले रहले ओके का बोले चांसलर चौकी के चीज तू फॉर द लेफ्टर ले जा और बोले कि अब तू कौन सी बतिया है बोले अब जो फॉर द रेक्टर गए तो तू चिल्ला बाटे कि संतोखी ओके फॉर द रेक्टर ले गए हैगा सो खातन में से अब देखो एक आदमी के नाम यो यो बेसारी एर वांकांग बेसारी इस ओक फरदाख इन स्ट्राफ सा फन द सीराम से पोस्ट पर वांग ई दोनों भैया भी एनडीपी एन मेरे ख्याल से रहा और ये सब अभी तो लोन जानो हैगा पोस्ट पर वांग हुफदराज क्रोमोसुतो और के बंद रहा अब यहाँ दुई मिला और उमा
Cabo Lehega, verdachtbaar over bekende politieke personen Suparmin, Jojo Besari en Usman Wanka Besari zijn ook verdachten van het tweede deel van de strafzaak van Surinaamse Postsparbank met Jojo Besari. Ik hoor top NDPR die bij de overige verkiezing aansluitend zijn, zocht bij de ABOP met zijn eigen politieke beweging. Wang Sang Besari komt uit de KTPI, een nieuwe stijl van KTP die bij de verkiezing van 2020 met de NDP heeft samengewerkt. Kali NDP, Yekademien Karia Dada, Kromo Suto NDP, Terek NDP, Oro Yaneki Hoofdraad NDP, Oro Jojo Besari NDP, Sub Ehi Sub Des Loot Ke Baitge Hamar Janta, O Hamara Piare Janta Ehi Sub Ke Phir 5 Baris Ke Baithai. Dit is kan niet, mensen. Jullie moeten toch jullie ogen openmaken. Er staat hier duidelijk aangegeven wie die rovers zijn van ons land. Dat ziet u hier. En hier betaalde gij, hè, dosto. Betaalde gij, Wang Sang Besari komt KTPI. En de peek zijn gekamkerd. Er zijn een aantal verdachten in deze zaak. Naast de politici zijn ook ondernemers. Twee andere bekende namen die genoemd zijn van de verdachten is deze zaak zijn Anwar Hassan Khan en Gin Mardo, Kromo Suto, Khali Malai, bhaiya, ham dekhila, kono Anwar Hassan Khan bhi hai, aur ye Hassan Khan joon hai, ye social media pe bahut jabar NDP er bhai, aur bari bari baat pe yahan pe ke bole hai, to op vrijdag 22 mei ke sakwa voor de rechter geil hai, verdachte zijn deze straf zijn aangemerkt, jekan naam ba Telalan, Hassan Khan, ego aan Hassan Khan hai, aur Kromo Suto hai, Hassan Khan Duigoba, Bhikam Singh hai, Jojo Besari hai, Wang Sang Besari, Bari Besari bhaiya, aur Kartu Rejo hai, Harpal hai, Sarjo hai, Tawahir Ajub NV hai, Global Equipment NV hai, Earth Cleaning NV hai, NV Garamengo hai Holding, Stichting Anfar van Multu, Electrial System NV, itna badka groep hai, joon hamare desh ke loot ke aur chapadai ke baith gaye hai, joon aaj hamar janta roye hai, aur bole the saaks don for verhoor van verdacht Kromo Suto, Hassan Khan, Jojo Besari, Teral and Earth, Kling NV over de project, Rishal 2 en verdacht Kromo Suto, Hassan Khan, Wasan Besari, Korcho, is een bhaiya bari naam hai, Khali Malai, re bhaiya, 3 kwart Khali Malai hai, to aajkal Malai no bhaiya, na Khali, ka bole saatei kaima ke banai ke banave hai, dekho Malai lo niya ka kare hai, the Ratsman van verdachten, Karto Rejo estikte anfartbaar, die tevens waarnaam voor de Ratsman van verdachten, Wasan Be heeft het verzoek gedaan tot uitstel van het verhoor van van verdachten, willen we verhoor nakker, uitstel kan ik je bhaag naar jij de soam ze bhaiya, vervolgens zijn de verdachten, Kromo Suto, Hassan Khan, zomaar is het thoro mange hega, zomaar thoro mange bhaiya, ki hem loke peeghig nikare, ke is het enemy ke jabad haat hai, sab milke mange peeghigya ke nikare, so dat is het ke sakwa in de mar jai, lekin peeghig ke koi na nikar paai bhaiya, hiya bataye gaye hai, verdacht Kromo Suto, Hassan Khan, Wasang Besari, Karto Rejo, Terlan, Sarjo, Multi-Ertonaal System NV, bole over het project Waterland. Verder zal op die dag al verdachten worden verhoord. Hassan Khan, Tawahir Ajub, NV, Terlan, to is sabke verhoor hui bhaiya, OM sabke, ima bhaiya hamare. Log dekho hamara desh mein kaun kaun khai ke baithal hai to ab ichi jo ab ufawater aave hai aur hamare janta Suriname ke ehi ke rakhe ring ke stem karke baithai se to jo boliyo to boliyo fe ha pe kon chikaris ya fe ha pe ke banchit na hove hamare janta hiya banchit hove je hamara desh
लूट के चपराई के और आज बैठल है। और देखो भैया हम और आगे जाएला लांगा लांद बावर जो निकेरी में है, अब खेती दूसर चीज करे, खाली चाउर के खेती सपना मांगे करे भैया। हमारा खेतियर जो है निकेरिया ने जवान जो है डायरेक्ट आउट शहर बकेस्टाल अस रेस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हुए है, अब बोले फुआ पे सब मांगे हैगा सितरस और नरियर बाना फ्राइड सुरतन हुआ मांगे सब लगावे सोमख बूरन बस केकन इन मिडल्स ओवर अनप्लांटेड फन दैसेंड सितरस बूमन। और बोले उसे बोवे लगल है, बोले चौरुए खाली सब ना करे लैंड बावर से निकेरी से ऑल इन डिफर्सी एन डिफर्सिफिजेरन। और भैया यहाँ पे बताएगा फरसोर शेख वाइदू, अरे भैया वेलिया वाइदू अंडर डायरेक्टर सब बनाई से लान बहु फीतिल फिसराई के ओहो भैया पेयल में से निकल के जाए के एनडी पे में घुसल ला सी तलवे न पाए राजा एनडी पे जैसे घुसल डायरेक्ट सब के अंडर डायरेक्टर बना दी भाई ये हमारा देश है। फिर दक्षत्री ने फन सित्रेश और बोले हैगा लान बहु इन फोर लिखते इनकेरी ओग रायन टुकुन वार्निंग में डायरेक्टर अंदर अफसर LVV के। तो वहाँ पर भैया भी यही चीज हो गया, तो मलाई लोन सर बड़का बड़का पोस्ट पावे जब से गईल है इधर इन देंग रेक्टिंग ओली खास मारव देंग कर ओक कई करनार ओन से एकन फुसल प्रोडक्शी एंड फुसल फैल खेत तेल देखो गया ना भी निकले बकी गरीब ताई वहाँ पर ओसने है दोस्तों दोस्त योली मुतनी देंक कि तेलवा निकले लेगी 2028 में तो हम लोग यहाँ पे ना चप ए गोड़ पे चीजो ऐसे ना है वन दे इस रखे रहेंगे ही नौखीन एंकल फोर बरेडिंग खदान में से। तो आप लोग को ये हम बता देते हैं। अब देखो मिनिस्टर स्टेनली सूरो पावीरो और हैगा मलाई फिनो भैया वो हैगा खरौन बलाइट एम्बोस बहिर के मिनिस्टर बा और बोले हैगा एगो रूबेन राफंस बैरक हैगा अलखमीने डायरेक्टर हैगा स्टेकिंग बॉस बहिर एंड बॉस टू से SBB के खीन अंदर कैसे ही दान है ओंसलाख verzoek tegen hem in te trekken. Suropavirus snijdt zichzelf in de vinger en moet ook zijn eksel eigen braksel inslikken. Toraven Swai bole hega GBB-ke minister bole hega Ravensbergke eerder voorgedragen voor ontslag. Ook okay, mange ontslag de we. Or de Malayu mange pindere to bhaiya te kapariya ke mange hega ontslag kere. Or bole waarna directeur door ontslagcommissie werd gehoord. Per schrijven 21 mei via Suropa weer een verzoek. Echter officieel ingetrokken. John Oekeler ha. Or bole intrekkele discussie over salarisverhoging en missief. Volgens Ravensbergke. Ravensberg stelde de minister dat hij van de vorige minister salarisverhoging had gekregen zonder dat daarvoor een missie was opgesteld. De appen op een salaris, de isab chalhalwe bhaiya jaise mangyo. Ik er baare ma Mathura ka bole hai. Aur Mathura bole hoofdraad moet volgende wet zelf aanwezig zijn bij de hoorzitting. Aur hoofdraad to door se hun op het terras pe bait ke. Aur saag advocaat se ladwawe hai. Aur hiya isab OM lo sab koi lade hai. Parlementarie Krishna Mathura se bole hega. फिनांसियल क्लीमर हुदरात एक्स मिनिस्टर हैगा फिनांसियन के जो चोरी करके भागल है पर सोलक अन्वेषक मुसैन बेरे देना एंड मैंने हेल मत ईस में दी से मुफ्राओ और यहाँ भी बतावे हुदरात वास नीत लाइफ लक अन्वेषक एंड वेर फर्तीखन वोर्द दोर से एडवोकातर दोर द राजमानर वेर द फ्राग अपगेवर्पन इन हुफेरे द यूजीसी juridische en formele procedures zijn gevallen. Or je bhagal hai abbe tak. Or je bhagal hai bhaiya lukaan hai. To eke koi pakad na paave hai. Hamare janta. Ye baat hai. To ab chalo bhaiya. Hum aap log ke lekar chalte hai Iran ki or. Iran se opus leiden hai. बोले है अनफाल फेस अमेरिका के बोले हम लोग के रेक्ट रियाखेर करे के नतीजे तौर देश में ये कोई दागी दान मुचे ये साल फर्दी देख तो यहाँ यही बात बोले है का बोले है का बोले कि वेलकम और बोले है का वे हैव अ रेक्ट ओम तो रियाखेरन एंड दैट क्लब अलमाल में से जब तौर देश में कोई आएगा लड़े
Oh ja, wat daar. Iran heeft een man excuseerd vanwege vermoedelijke spionage voor Israël. Meldt het persbureau. Oh, Rego, en Mieke Maart, daar is Iran, bole Iran ke, Irak en Israël ke spion raha. Iranse revolutionaire garde zegt een Amerikaanse drone uit de lucht hebben gehaald. Het zou gaan om een drone van het type MQ-9, zoals op de bovenstaande. Ja, wat ik heb, in Amerika ke drone geraisega. Iran. De VS beweegt met de dag verder en verder weg van zijn voormalige status, zegt hij. Iranse opperste leider, John Higa, bolle Iran heeft recht om te reageren over de schending van staakt het vuren. Auro bolle Mojtabo Kamenei bolle hij. Golfstaten niet langer met een skill-jagra zullen zijn voor Amerikaanse militaire basis en dat de VS geen veilige haven meer in de regio zal hebben. Iran het recht heeft te reageren op enkele schendingen van de Amerikaanse staat te vuren. Volgens de staatsmedia heeft Iran de Amerikaanse MQ-drone neergehaald, mensen. Dat weten jullie allemaal. We gaan naar een liedje, mensen. Daar komen we straks weer. Weer terug. Ego Tropic Salsa Cuban, que gita maploko, sunayenge.

ये प्यार तुम्ही से हम करते हैं और दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम की समाचार को लेकर। दोस्तों सूरीनाम में भैया देखो क्या हो रहा है, बोलिए जोनी आज तू रूफन उफन के बारे में ना बताइले, जरा रखेरे अखेरे के बाद बतावे, जैसे रहते दोस्तों आपको बताते रहते हम। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, इंस्पेक्टर भैया एगो होफ इंस्पेक्टर सोना ओना पहन के गैला त्रेम करे भैया, सवेरे सवेरे गैला जॉगिंग करे, चले दौड़े गैला और दौड़ते दौड़ते बेचारा ऊपर तो होफ इंस्पेक्टर है, होफ इंस्पेक्टर है गैला जॉगिंग करे, बस उतरे में भैया जॉगिंग अतवार अतवार के बातचीत है, आई जॉगिंग करत ना कसाबा होलो वेख में भाए हुई दौरत ना सोना होना पहिर के कोई जाए जॉगिंग करे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर गैला जॉगिंग पहिर के और दौरे भैया उतरे में भाई सबन ओके पटकीस है, ओके पाटकी से भैया ओकर केती हांगर अंगूठी ताहत निकारी से, और जो निकारी से जबरदस्ती रो फरवंत काली वही ना निकाय से दांते काटी भी एक के खूब भैया, और इंस्पेक्टरवा के बड़ी मार मारी से खूब में सांदल करी से इंस्पेक्टरवा के, और वही मट्टी में दबाए रहो खरन खुद्र, और भैया हाथ गोड़ सब फूल गए हैं इंस्पेक्टर के हाथ और फूल गए हैं, और जितना लिंकर हाथ में दांते फांटे सब काटी से भैया और ले के सब चोरन फरार हो गए हैं, बताए गए हैगा बताए गए हैगा ना द रोस लुखन द फरदाख्तन ब्रोम फिट्स पे पेल भागल भाई और चल गए अब तक तो ना पकड़ान है। तो सोचो हम लोग के देश में सूरीनाम देश में दोस्तों सूरीनाम देश में जो इंस्पेक्टर की ये चोर रूफ कर ले तो हम लोग कौन खेत के मुल्ली है भैया, हम लोग के साथ का हुई। अब देखो भाई एक ऑटो अपरे के एगो ऑटोमोबाइल्स अनखिफ्त करी से बोले पोखिंग तो दौचला है, अब बोले दिन सेल्फ क्लाक इन तेखे को पुलिसी आदमी पुलिसी को पर क्लाक करी से गा ये रमिया ऑटोमोबाइल्स तुआ बोले इसको तू ओकर साथ का करी से एगो 28 यार के ऑटो ऑटोमोबाइल्स थे सदिचर अतवार के रात के मेल्द करी से सिपाही में अनखिफ्त करी से tegen hem had gedaan wegens poging tot doodslag. Volgens wordt de VS een vriendin help met de verhuizing. Ik wil vriendin help kunnen trahan.

eerkeleraha dat hij er moeilijk langs kon rijden. Bolehega, oker bagalias napa sobes koutwe etra moeilijk about uwa parkeerkeleraha. Bole met moeite, bole hem voorbij bijli he, verklaarde. Verklaar verder dat de politieman vervolgens hem aankwam en de zijspiegel van het voertuig vernielde. Bole hamar otoka zijspiegel toerise. Bole hij maakte daar op dat moment geen probleem van. Bole hem kutsena bolli he. Maar reis rechtstreeks naar de politiebureau leidde 9 met hem geili he. Bole aangifte kalli he. Intussen had de politieman al melding gemaakt dat de automobilist op hem zou zijn ingereden. De politieman bleef daarbij ongedeerd. Bole hamar ऊपर उछलाए से बोले हमें कुछ ना भईले बोले उल्टे आउ करी से अनगिफ्ट नाते सेन gehoord werd hij zondag heen gezonden. De zaak met betrekking tot vernieling van een voertuig van een VS is overgedragen afdeling van een onderzoek personele zaken mee अब एक बार हम गए है तो सिपाही जो अपरिक्रमिनील gedrag के करेगा भैया तो हम लोग के देश के स्केकर ऊपर तो बाऊ करिए भैया उसको तू जो आदमी हुआ रहे तो सोचे हमारे बराबर और कोई है ये ना है हाँ सोचे हमारे बराबर कोई है ये ना है आप लोग को बीते हुए दिनों में बताए थे कि एसएलएम के मोतरवा में 500 किलो कोकाइन सब लुकवाए रहा जाने ना मौसा कोनो पकड़वा दे रहा ते एकर बारे में कितना आदमी पकड़ान रहा एगो फैफन देर तक यार के शीर्षांत भी पकड़ान रहा एगो त्वेये फिर तक यार के शीर्षांत और बोले हैगा अन सेफ मार्ट के सखवा आन खाउद रिसर्च पकड़े रहा मिलिट्री पुलिस पकड़े रहा और बतावे त्वेये शीर्षांत वर्ड इरफान फरदाख द से नवंबर 22 2022 में 500 किलो इलीगल लैंडिंग्स बान इन फाला वात्रा खबीत ओना सिपाल विनी के बतिया भैया इन सिपाल विनी में रहा फाला वात्रा में ook zouden zij nabij de landingsbaan op de uitkijk hebben gestaan, mensen. Deze taketraha op 17 november mee. Drugsvliegtuig zou zijn geland in Falawatra gebied. Naar aanleiding daarvan vertrok er gemengde politie-eenheden naar de locatie om onderzoek te doen. Daar troffen de West-Dinaren illegale landingsbaan en een eenmotorige vliegtuig aan. Het toestel was gestript en had beschadigde vleugels. Een drugshond gaf een positieve melding in de vliegtuig. Op 16 Satsorago, een baril. Een 50 liter kerosine hoe per haar ongecontroleerde politie al voertuigen een paar bollen 500 kilo pijzen bij jij chou zo naar haar hoe toen ja nee Suriname gehaal toe biswaas naar rege bhai daar gaat het om hem beschuldig koeik na karila lekin biswaas naar rege henani karen ki jep hoe druk je pakra hai te kitna bole pisan jar ja hai bole druk spugal hai sko tu lok ke ghar me tu dikhe kon kon oto chalave bhaiya te bole I paiswa tu paisa se kamaile bate mehnat se kamaile bate ki druk ke paisa se kamaile bate I sab Suriname me hove bhaiya aap dekho ego brandweer man tevens beveiligers man verlies dit wapen na de verkeersongeluk arening करी से को प्रांतवीर के एनमी अब फैलक के भी एनमी रहा बस अब ने कर पिस्तौल वे चोरी कर ली भैया तो सोचो हमारा देश में क्या हो रहा है अब मैं बता रही सिपाही के बारे में भैया सिरादन एंड खेल बैठ खमाक अन बेय एन इनब्रक वोडे को होफ इंस्पेक्टर सुरीनाम में भैया ओकर घर में चोर घुसल है यूस्टिनस स्ट्रैट में और होफ इंस्पेक्टर के घर में ये घुसल है 3 बजे तो जब देखी इसके ओकर स्लैब कामन में ओकर कलाई सब टूटल है जेमा ओमा सोना के गाना रहा भैया पैसा रहा भलांग रही के दो की मेंटर रहा तो इंस्पेक्टर घर में क्लोज धरे भैया तब सुनियो ओमा से का गईल है द दादर्स फॉर शेयर देन द क्लोज और ओमा से ले गए 1 मिलियन एसआर दे के सोना दो गो पैट्रोन हाउडर्स ले गए है और फिर 3.7 यूरो ले गए है 5000
800 Amerikaan dollar liggen hebben. En andere documenten volgens de aangegeven bedrag de totale schade van 50.

Deutschen American Dollar, तो बताओ इंस्पेक्टर वाक सलारस कितना है जो 50,000 अमेरिकन डॉलर की चीज वो घर में धरी से एकर बारे में हुआ ना जाए ओनर सुख होवे खाली चोरवा के जाए पकड़े जो ने इंस्पेक्टर वाक मालवा फिनो के पा जाइए एर वर्क वर्क अन ऑस्पोरे अन होनिंग फॉर फॉर फ्लुक्त में से तो सिपाही के घर में इतना इतना चीज इंस्पेक्टर घर में 50,000 अमेरिकन डाला के और गहना मिले हैं तो हम

स्पेशल आपके लिए, स्पेशल फॉर यू। चटनी शो का प्रोग्राम आप सुनेंगे, स्पेशल फॉर यू। ये चटनी शो का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद से, और त्रिनिदाद से जाऊँगा गयाना, गयाना से सूरीनाम, वहाँ से वापस आ जाऊँगा हॉलैंड देश। और ये शो का प्रोग्राम का शुरुआत करता है आज शाम का, या आज का प्रोग्राम में जो है, शाम हो या रात हो या दिन हो या सुबह हो कोई बात नहीं, हेमलता दीनदयाल, उन्हीं के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: हुआ हुआ क्या सुखा मिलेंगे आपने सुना त्रिनिदाद या टोबैगो का सॉन्ग अभी आपने सुने। अब की बार ट्रेडिशन का म्यूजिक रिलीजेस सोका मिक्स ऑफिशियल इंजी रूम आप सुनेंगे और वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो से।
1: This is not my money spent.
2: Yeah, because I made our money.
3: You can call somebody.
2: You see me trying to get a signal.
3: Oh gosh, well, you could ask for a ride or something.
4: Who you want to ask? Who? I can get a ride, please.
5: Only one rider. Come now, man. Are you good now?

नॉट मिसिक रिलीज सोका मिक्स सभी आपने सुना। अब की बार वेस्ट इंडियन चटनी मिसिक आप सुनेंगे लाइव रिमिक्स बाय मुरई भौजी। और गाना का बोल है मुरई भौजी होना चाहिए। और हिमलता दीनदयाल वंस अगेन प्रोग्राम में।

0: wanneer de zon je wekt in de ochtend, het licht je doet stralen.
1: जब सोका और मेरेंगे के बात होता है तो सुंदर पोपो को कभी मत भूलना चाहिए दोस्तों. द किंग ऑफ कैलिप्सो त्रिनिदाद टोबैगो का सुंदर पोपो के आवाज में आप एक कैलिप्सो सुनेंगे.

त्रिनिदाद एंड टोबैगो का अभी चटनी आपने सुना और वो था द किंग ऑफ सोका मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज में। आपकी बार मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद टोबैगो छोड़कर गायना को दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत चटनी सोका लोग गाया है और रशिका दीनदयाल तैयार हो गया है चटनी ऑन द बीच।

0: आशनी मता दिन के बाद दोस्तों हम चला जाते हो आपन बैठक चटनी स्टाइल। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्रिस राम खिलावन के आवाज में
1: तोरी अखिया हो और पतिया।

मिस्टर क्रिस राम खिलावन की आवाज में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ हॉलैंडेश। द ईगल्स बॉबलिंग हिट आप सुनेंगे। डीजी विदेश, हर तरफ तेरी जलवा।

तेरी जलवा हर तरफ तेरी जलवा के बाद दोस्तों जान से जहां सोको मेरेंगे चलता है वहां भी बिगी पोको चाहिए तो आई वन एसबोम ये सरनाम जिस मेरे गांव में रहता है दोस्तों रहता था तो उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे बिगी स्मार्ट स्टोरी।

सुनने वालों के खिदमत में अदाबर्श नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, मई के 26 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फूल तीन के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नैदरलैंड में आए हैं, उसको मैं वेलकम खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए, मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

परवर दिगारे आलम, अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे मेरे हिस्से का ओपनिंग सेलेक्शन।

ये दिल लेकर आया नजराना। अभी आपने मुकेश और साथ में आशा भोसले से रेडियो फाहन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में सुन रहे हैं। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहोन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 7 मिनट बाकी है 1:30 बजने में। आप रेडियो फाहोन पे चून है और हमारा पता है योहान्स रिंकर काद 391 तक। तार का नंबर है 3622077 और दूसरा तार का नंबर है 3652247। एक नजर बाहर के ओर डालो तो मौसम बहुत अच्छा है और तापमान टेम्परेचर धूप निकला है और टेम्परेचर 27 तक से लेकर 30 ग्रेड तक। और खुशी की बात है कि इस वक्त इंटरनेट द्वारा रेडियो सुन रही है बारंद्रेख्त के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श। प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये गीत आपके नाम पर कि मोहब्बतों का सफर है हमारे साथ चलो।

मोहब्बतों का सफर है हमारे साथ चलो। और खास करके ये गीत पेश था बारन दरख्त के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श के लिए, प्यार और मोहब्बत के साथ। किस्मत में होगा वही, किस्मत में होगा वही चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चले जाएगी। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से आप गीत सुनेंगे।

दुनिया में होंगे दिल वाले, फिर भी हमारी वफा। याद करूंगी अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहौन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। कहते हैं कि चांद चांदनी से होता है, चांद चांदनी से होता सितारों से नहीं, प्यार एक से होता है हजारों से नहीं।

साजन मेरा उस पार है, मिलने को दी बेकरार है। अब यह अपने लता मंगेशकर से गीत सुन रहे, संगीतकार अनु मलिक। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, देखा जाए तो गाने वाली है लता मंगेशकर।

0: और जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने किसको खबर कब होगी। अभी आपने मोहब्बत भरी गीत लता मंगेशकर से सुन रहे थे रेडियो फाउन के मंगलवार की प्रोग्राम में। आज एक वादा करो हमारी बीच, आज एक वादा करो हमारी बीच, कितनी भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ना हो मगर हम कभी बात करना बंद नहीं करेंगे।
1: कारवां

ऐसे मोहब्बत करे कि मर भी जाएंगे फिर भी जिंदा रहें। अभी आपने ये प्यार भरा गजल सुन रहे थे रेडियो फाहोन के मंगलवार के शाम की प्रोग्राम में। आप फाहोन रेडियो पे चुन है, हमारा पता है योहान श्रेंकर का 301 फैफ तक।

अभी अपने इश्तिहारे सुन रहे थे, इसमें देखा जाए तो 2:01 व्यतीत हो चुका है। गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ। गीत की बोल है, झूमता मौसम मस्त महीना,

झूमता मौसम मस्त महीना, अभी आपने लता मंगेशकर और मन्ना दे से गीत सुन रहे थे। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गीत की बोल है, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो और चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो।

जहाँ मैं जाती हूँ बस वहीं तुम चले आते हो और चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। अभी आपने लता मंगेशकर और मन्ना दे से गीत को सुना। मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में इसमें देखा जाए तो 2:09 व्यतीत हो चुका है। हर किसी के लिए दुआ क्या करूं, हर किसी के लिए दुआ क्या करूं, क्या पता किसी के किस्मत में तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही है।

मुझे खुशी मिली इतना कि मन में ना समाए, फलक बंद कर लो झलक ही जाए। भी आपने किशोर कुमार से गीत को सुना। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गाने वाली है लता मंगेशकर और गीत की बोल है मेरा नाम है चमेली।

मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालनल बेली। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना रेडियो फाउन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। याद रखना, याद रखना, किसी के लिए रोने से कोई अपना नहीं हो जाता है।

ये हसरत थी कि एक एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिला। भी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे। इस पार जो गीत आप सुनने को जा रहे, गीत की बोल है, गरीब जानकर हमको न तुम मिटा देना।

0: तुम्ही ने दर्द दिया है और तुम्ही दवा देना, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना। अभी आपने गीता दत्त और पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 2:30 व्यतीत हो चुका है। आप फाहन पचून है, हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद भाई जॉनी इस प्रोग्राम को ऑफर लेगा। प्यार भी कमाल की चीज़ होती है, प्यार भी कमाल की चीज़ होती है, दिल से शुरू होती है और दिमाग तक जा क्यों ख़त्म हो जाती है।
1: मिलते रहे देखिए एक दिन

यूं ही अगर हमसे मिलते रहिए, देखिए एक दिन जरूर प्यार हो जाएगा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे। हजार फूल कम है एक डोली सजाने को, हजार फूल कम है एक डोली सजाने को, एक फूल काफ़ी है एक अर्थी उठाने को। लाखों खुशियां कम है जिंदगी बिताने को, मगर एक गम काफ़ी है उम्र भर रुलाने को।

अभी आपने दर्द भरी प्यार मोहब्बत के गीत सुन रहे थे कि सुन मेरे साजना, देखो हमको कभी मत भूलना। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर आपको गीत सुनाए रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। हमारा आपके मिलन 3 बजे तक है, 3 बजे के बाद भाई जॉनी प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

फिर जरूर आने वाले मंगलवार को मिलूंगी, इस बात का वादा करती हूँ मैं। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से गीत सुना।

और दे दो हमें इजाजत घर जाने के। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत को सुना, इसमें देखा जाए कि 3 मिनट बाकी है 3 बजने में, और इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया है खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श, आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा और हमारे बाद साल ऑन सकोलई का शेर खबर देर द कोलेखा एंडातिस भाई जॉनी सालत प्रोग्रामा ऑफ नेम। तमाम सुनने वालों के खिदमत में खुदा हाफिज, नमस्कार।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जो चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

निशोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ, साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रवि सिंह एंड नादिया सिंह दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

की बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा निहिर सिविल सेस के बात है जब ये सिर्नांडिस आया और उसी समय पर एक बार बना था जिससे एक पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पता पता।

स्पेशल आपके लिए, स्पेशल फॉर यू। चटनी शो का प्रोग्राम आप सुनेंगे, स्पेशल फॉर यू। ये चटनी शो का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद से, और त्रिनिदाद से जाऊँगा गयाना, गयाना से सूरीनाम, वहाँ से वापस आ जाऊँगा हॉलैंड देश। और ये शो का प्रोग्राम का शुरुआत करता है आज शाम का, या आज का प्रोग्राम में जो है, शाम हो या रात हो या दिन हो या सुबह हो कोई बात नहीं, हेमलता दीनदयाल, उन्हीं के मीठी आवाज में आप सुनेंगे।

0: सुखा मेरेंगे आपने सुना त्रिनिदाद या टोबैगो का सॉन्ग अभी आपने सुने। अब की बार ट्वेंटी का म्यूजिक रिलीजेस सुखा मिक्स ऑफिशियल इंजी रूम आप सुनेंगे और वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो से।
1: This is not my money spent.
2: Yeah, because I made our money.
3: You can call somebody.
2: You see me trying to get a signal.
3: Oh gosh, well, you could ask for a ride or something.
4: Who you wanna ask? Who? I can get a ride, please.
5: Only one ride, oh. Come now, man. Make it up.

0: vibes.
1: Not music releases Soca Mix, सभी आपने सुना. अब की बार वेस्ट इंडियन चटनी म्यूजिक आप सुनेंगे लाइव रिमिक्सेस बाय मोड़े भौजी. और गाना का बोल है मोड़े भौजी होना चाहिए. और हिमलता दीनदयाल वंस अगेन प्रोग्राम में.

0: wanneer de zon je wekt in de ochtend, het licht je doet stralen.
1: जब सोका और मेरेंगे के बात होता है तो सुंदर पोपो को कभी मत भूलना चाहिए दोस्तों. द किंग ऑफ कैलिप्सो त्रिनिदाद टोबैगो का सुंदर पोपो के आवाज में आप एक कैलिप्सो सुनेंगे.

त्रिनिदाद एंड टोबैगो का अभी चटनी आपने सुना और वो था द किंग ऑफ सोका मिस्टर सुंदर पोपो के आवाज में। अब की बार मैं चला जाता हूँ त्रिनिदाद टोबैगो छोड़कर गायना को, दोस्तों वहां पर भी बहुत चटनी सोका लोग गाया है और रशिका दीनदयाल तैयार हो गया है चटनी ऑन द बीच।

0: आश्री मता दिन के बाद दोस्तों हम चला जाते हो आपन बैठक चटनी स्टाइल। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्रिस राम खिलावन के आवाज में
1: तोरी अखिया हो और पतिया।

सर क्रिस राम खेलावन की आवाज में अभी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ हॉलंदेश, द ईगल्स बॉबलिंग हिट आप सुनेंगे। डीजी विदेश, हर तरफ तेरी जलवा।

बस 12 मिनट बाकी है 6 बजने में, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं 12 मिनट बाकी है 5 बजने में। मंगलवार का दिन है और कुछ मंदिरों जो आज मंगलवार को लगने वाले है, जैसे मंगलवार को सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर लगता है और दमेरन उत्रख में गणेश मंदिर लगता है, दनहाक में श्री राधे कृष्ण मंदिर लगते हैं, इस प्रकार से मंदिरों का कार्यक्रम भी आज। छब्बीस मई कहलाते हैं, 26 मई 2026।

तेरी जलवा, हर तरफ तेरी जलवा के बाद दोस्तों जान से जहां सोको मेरेंगे चलता है वहां भी बिगी पोकू चाहिए। तो आई वन एसबोम, ये सरनाम जैसे मेरे गांव में रहता है दोस्तों, रहता था, तो उन्हीं की आवाज में आप सुनेंगे बिग स्मार्ट स्टोरी।

लिए। तो दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग कितने दिनों बाद हम चलाते हैं, आओ देखा जाए दिस लास्ट भोजपुरी सॉन्ग फन 2024 का।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और आज की रात क्या होगा, रात छोड़ो चलो हम लोग बम्बई का रानू देखा जाए।

ही देंगे। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर कर

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरे राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम।

दोस्तों, तू धड़कन है के बाद हम तुरंत चलते हैं और चलते हैं अपने सूरीनाम की ओर। आप लोग को पता है हमारे यारों की यो लीफ टाइट है, पेंशन लीफ टाइट जो है यहाँ हॉलैंड में कहाँ 5 तक से 7 तक कर दिया। अब ये जो यहाँ के यानी कि ये तो है रोबियन मांगे है सीफन तक करे दोस्तों। इसके बारे में यहाँ के बोंद जो है बहुत नाराज है, बोले दित मुत वेख फंद ताफल, तो ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा और आगे में आप लोग बताएंगे। लेकिन दोस्तों बात ये है कि हमारा सूरीनाम में जो है वहाँ के मिनिस्टर फ्रॉम बिनेलांस साक जो है रखेरिंग जो है और वो सब मांगे है, वहां पर भी जो लीफ टाइट है यानी कि पेंशन लीफ टाइट जो है इस समय पे वहां सस्तक है। सब मांगे सूरीनाम में भी फरहूख करे फनाफ्तवे ये सस्तक तो फेवन सस्तक यार मेंशन, तो ये सब सूरीनाम देश में सब मांगे हैं पेंशन लीफ टाइट भी फरहूख करे। और एक बारे में जो है जो बारे में हैगा पेंशन लीफ टाइट कॉन्क्रीट खफरा ओम आउटवर्कन फन 62 आन 65 यार और मिनिस्टर फन बायोटेक्नोलॉजी साक जो है मरीनस बी हैगा फॉर ब्राइट करे हैगा वेट कीपिंग फन पेंशन फन 60 यार तक आन फरहूख मींस कॉन्क्रीट इज आन टीम फन दस कि कैसे ये पेंशन ग्रेंस व कैसे काम होगा। बोलेगा से वर्कर न्यू ऑन एट वेट वेस किंग वेट वा मांगे से वन फ्रेंडर करे। बोले कैप्स ओ खफरा और मेट मैच खपलक मेन इन फेल मार ओक द बोंडन त बत्रकन जो ने डेमोस्ट्रेशन ना हुए बोंड के मी का बोले है व्हाट वर लेयर आउट द एरफारिंग फन अंदर लंदन जैसे फ्रांकराइक भेले कि हुआ पर सबन डेमोस्ट्रेट करिसेगा और यहां पे भी मांगे बोंड से बात करे जो डेमोस्ट्रेशन ना आवे और लीफ टेर ग्रेंसवा जो है और फरहूख हो जाए। और बोलेगा बोले लीफन एंड यंगर आउट सीन और बोले वार्डोर हेड लाइक आउट ऑफ द ओवरहेड कैनस वेखोइट। बोले है अन मेंसे दी डिस्पेंसेशन फ्रागन ओम ना 60 यार दूर तो कुनन वर्कन सेन बदूलिंग इज दार ओम दिट यार नोग हेड फर्स्ट फोरस्टेल इन दे एना बहांदल तक रहिखन। तो सूरीनाम में भी सब मांगे चढ़ावे हुआ के आदमी नो क्रिटिक लीफर करे है दोस्तों। Maar ik vind namelijk de gezondheidszorg moet daar eerst veel verbeterd worden. Want het moet gewoon al snel maar jij bij jou. Aap loon jano hein. Karen ki gewoon gezondheidszorg joon hein Suriname des mee. Is niet zo goed. Waardoor mensen eerder gaan ze overlijden mensen. En ze mangen 70, de 70 kerde. Is de kans groot mensen dat heel veel mensen hun pensioenleeftijd niet halen. तो हम चलते हैं भैया सिमोंस की ओर। ये बड़ा प्रॉब्लम है दिसवा में यार, हम तो से का बताई दोस्तों। और इस सिमोंस से बुढ़िया हो गई है और जाए के इतना फ्रांतुरलक है अस प्रेसिडेंट जाए के कुर्सी पे बैठ गए हैं वार दूर इन ना चलाई पावे भैया बोली सेगा से से से हार्ट ने ने ने बहुत चीज ओके घसकावे पर गया पासपोर्ट ना कर पावे है वार्डोर देश मफराओं ने रस नहीं देखे और जाए के ले लीजिएगा उतना बड़का प्रॉब्लम दे स्वामी जो कितना रोज से रहा एंड सो वेट ओक नीड हू से दिट मुत गान ओप्लोसन। यहाँ पे निकलेगा 25 मई के ओंडेक्टन वो दैट द एनडीपी 18 सीटल्स हैड इन प्लांस फन 23 सीटल। बोले है जब उभैल है 25 तारीख मई के फरकीसिंग थे बोले हम लोग दिख हम लोग के खाली 18 सीटल है इन प्लांस फन 23 सीटल और एक कॉम एयर ओवर 2 ईयर वेयर ऑफ द ऑफ दैट मोमेंट इज दैट नीड फॉर बलांग। मैं बोले दो बार इस बात हम एकर बारे में बतावे बोले हम लोग सोची हम लोग के 23 सीटल मैं बोले खाली 18 वो है बोले दुई बार इस बात एकर बारे में हम लोग फिनो आबे एनडीपी के बारे में बोले हैं फॉल्कर सिमोन मुझे एनडीपी डीलन में तो वास है तुन हाथ
और उनके सबके लिए के काम करे परवान फान कोलिशी में दुनिया भर के रे यानी कि पोलिटिक पार्टी ओमाबा और बहुत जुगु जुगु हम सब मांगे अपन ऐखा बलांग करे और सीमों सबके कर ना पावे तो बहुत चक्कर में पड़ल है। और एक तो देश इतना छिछा के लेदर भैया बतावे फोल्क एनडीपी फोर सीटर बोले हैगा बोलेगा यंगरन हेवन खसे असिस्टी मुस्किन की एक भी लाख वेरक बिनन और खान दे देना हेट हीव 10 यार गदीन ओम फान अन बपाल पिन नार अंदर पिन टू कोमन सो दैट साकन बेटर कोंडन फंक्शनेरन वो होपन दैट वी बेन दे डिजिटलाइजेरन ओनसे बस्टूर सिस्टम कुनन फॉरबेटरन एंड दैट वी हियर फॉर गेन 10 यार नोडिग हेवन हेट कान ईर्दन एंड वो बिगिनन हेट दिस यार बोले बहुत इन खविकल्त है। एक बारे में सीमोंस बोले है हमारे दोस्तों अतिस नित माकलग सुरिनाम इस इन अनहील ख्रूत प्रॉब्लेमेंस और लीनिंग के ऊपर लीनिंग सब ले हुए भैया तो अब इसके बारे में हम आप लोग को और बताएंगे। अब देखो यहाँ पर काम बताए गए हैं, बताए गए भैया बहुत जबर सुरिनाम में रेबवेस बिका है भाई। रेबवेस वहाँ जाए के किनियो जैसे की दुकान में जइयो तेगो बोरू किन लियो गो कोला किन लियो ऐसे सुरिनाम में रेबवेस आदमी हुआ बेचे है बताए गए हैं मीडिया पे। और कितने हैं बिना रेबवेस के चलावे है और चलेबो करे हैगा बिना रेबवेस तो दारू ढकोल के चलावे है। तब देखो भैया एगो आदमी दारू पी के एकदम नशांद रहा ऊपर सुकर रेबवेस ना मारे जाए के एक मिला के बरीफ बेस एकदम छितर के बित्तीर हो गए और बाद में जाए के वो पेड़ में मारी वो तो एकदम तो उतर लॉस हो गए। अब सोचो भैया के बरीफ बेस किन के लगावे एक परी नानी यही न ट्वेन तक यार के लौंडा यहाँ पे बतावे गए हैगा बोले हैगा वानी का बात है लेने आख के बात है गए ले को बरीफ बेस में मारी से को पेड़ में मारी से और रमिया बहुत जोर चलावत रहा तो रही बेस ना रहा ऊपर से दारू ढकोल के चलावत रहा। तो यहाँ बतावेगा रोन ट्विंटक फाइव एंड ट्विंटक आठ बजे रात के साढ़े आठ बजे रात के मेल्डिंग आयल है एगो पांच नंबर नीखने नीखन तक हैगा वहाँ पे ओ तो जाए के बॉक्स भाई लेगा और बड़ा फरकलार कर से को उज्जर उज्जर ओ तो है ब्रीफ बेस पेड़ में मार के और टंगल है। और आठ नंबर के बात है लेने आख रही दिन आठ नंबर के बात है और बोल स्टिल तंत एगो क्रोइस पेंट जेका नाम बा हरिदत्त लालिश रात के और बताएगा रनमिया इंदम नसांद्रा नाम का खीफंस द मन वेट आन खाओदन भले मरल ना भाई और जाए के एक के पकड़ी से और सिकन है इसमें गले बहंदलिंग के इन ट्विन तक यार के लुंडा और जाए के इतना बड़का अरेडिंग करी से दोस्तों बहुत दुख के बात है। सुरिनाम देश में ऊपर से दारू पिए हैं ऊपर से ओतो चलावे हैं तो कैसे अब देखो भैया हाँ ये रखे रेंगवा एक तो पैसा ना देसुआ में बड़ा जोर बरासिलिए घूमे भैया देना वेद देना बोले एकर मंगल ऑफ हेल्दरिंग तुम बताओ कि तुम कितना पैसा ले ले बरासिलिए जा तो कानी कहाँ कहाँ तुम जा है छू छुआई जा है का कि काम से जा एक बार ऑफ हेल्दरिंग मांगी सेगा जेनिफर सिमोन से जो वुड्स डाक के फिनो ब्राजीलिया गए ले डोमिनिकन से रिपब्लिक गए ले जेमा एगो देना लेत अमारानी जर्वंदन जोन है स्टार्ट सोफ के बोले है बेटल आंसर राई से बोले बहुत ढेर है ऑफ लीफ फ्रॉम फोर सुरिनाम बोले हम लोग का कुछ फायदा ना है और तो लोग घूमे हैं बोले खप्लेंदर है ब्राजीलिया के प्रेसिडेंट में तो दिले खास इफान मिनिस्टर है सो आप रही से निकदाई और ही गैला भैया जहाँ होकर आदमी भी गैला घूमे और बोले खून गैला बके हुआ नूतुले करत रहा वरफान सिमोन बोल रहा होकर आदमी रखेरी में एक कोबुन न बमुई करेगा मैया खाट वेल नाम लिख नूतुले मा के एनांद्रे डिंगस जरबंधन जोन है बैतलान से साख के बोले मिसी आंसी Kosten zijn hoog. Bullen zij vragen zich af wat concrete voordelen zijn van de reis van Brazilië. Zeker omdat de aanvankelijk geplande ondertekening van de memorandum van de, of de onderstanding over de maritieme samenwerking zou zijn teruggebracht tot een letter in intent. यहाँ पे बतावे है मिनिस्टर गैला फॉर लाइट मिनिस्टर एलवीवी गैला तेजी
TCT kegela, Zozavo kegela, Defensie kegela, hele delegatie kegela, Gome Bayamela, begrotingsposten, de reis wordt betaald. En waarom de regering hierover geen antwoorden aflegt bij Nationale Assemblee? Bulletulo, het rijder, de jaargroep, barbekitulo, nabatawe kakre ja, bulle ik er waarom tulkitje heen verplicht, ja, pe, batawe ke, bulle zo werkt het niet, zo gaat het mensen. और यहाँ सीमोन भैया सीमोन बोले हम लोग चाटा में बाटी ना लेतर लग के बाद बतिया है किसी नाम में इतना बरसा भैले बात चले है मोदर पुल के बारे में भैया प्रेसिडेंट सीमोन बोले वो क्यों ने खीर मोदर पुल इन इंस्टा फरांदर इन अनखलास देर ड्रिंक वाटर बोले देशवा इतना चाटा में है और बोले थोड़ो एक गिलास पानी मुके हम लोग सफा कर पावे माँ वेल बोले चलत रहे बोले मोकिंग कास्टिस्टे तो सिस्टी वो कब कैंकी करिए प्रेसिडेंट बोले मॉडल पुल एक घंटा बोले बोले कि एक रोज पे हम लोग ना प्रॉब्लम अपलोस कर पावे और 25 तारीख मई के हिंग स्टार्ट्स ऑफ स्टार्ट्स होफ एगो सिचुएशन अरे यार एक बारिश होई के 25 मई के एक बारिश होई के देशवा में लेकिन अब तक कुछ मोई ना भइल है सीमोन बोले हैगा हम लोग थोड़े एक बारिश में दो अच्छा मोई कर पावे बोले फालिता वेसल कुर्सवा स्टेबल कर ले बाकी उतर चांस संतोखी करके गए रहा अमदा तो के रिजर्व कास में पैसा धर दे रहा तब कुछ स्टेबल भइल है और या सीमोन नाम बनावे फरागा उड़ावे कि हम स्टेबल कर ली है ओक इस एर का स्टार्ट में अंदर मनीर फन वर्कर बोले दीर होंद एरफीसी सेगा और एरफीटी सेगा अम द बेटर त लातन फंक्शनेरन और हम अगले जाने कौन सी फंक्शनरी सब करे है फर्दर व्हाट इट ओक एनालिसिस फन स्टार्ट बिद्रेफन खमाक और बोले हैगा अंदर पर नेचुरली मैं ook een brug komen naar Guyana. Maar dat is echter niet haar primaire doel. Bolle blokkia mange banawe, maar bolle ook haar doel na he. Ik ga echt werken en naar zaken stap voor stap te verbeteren. Oh, Joost Santoki bolle dat stap voor stap op hoe je wordt toe op ik gebruik kreeg. Bolle hega, ik op brugkie banawe Guyana se unikiri se. Bolle jaar kapot hebben gemaakt en de basis te leggen. Zo doordat ik de बताए सो दैट वे इन द कोमे द प्रीडर रिपेयर रास्ता सब टूटल है भैया बरखा बरसे सब बुड़ल है और बोले हैगा सीमोन ऑन देखते कि ओकर पड़ते है उबरसिया 10/23 से इतल मार्सलेक 18 को खाली पाए से दार ऑफ साल से एक्टर पास ओवर एन ईयर ऑफ टू बोले बतिया है कब बता रही बाकी प्रेसिडेंट तो बाटे ना द प्रेसिडेंट बाटे तो देशवा तो मोई कर से ने मफ्राउ सीमोंस प्रेसिडेंट अने इस साल अब ना बोले है संतोखी के कसूर है ना बोले वो बतिया दोस्तों ऐसे बतिया है अब देखो भैया का बोले देना लीडर जो नहींगा उस सबके फरहोर हुए है हाँ सोमो हार जो भाई बड़ा प्रॉब्लम है कई मिलियन यहाँ बतावे वो हड़पी से या दराई करी से पेकर बारे में फरहोर भैले रिया नून मोहम्मद भी भैल है और का बोले हुफदराज के बकी हुफदराज तो अब ना भैले दूर से बातचीत करे लग गास पानी पियावे है और बोले हम कुछ ना कर ले कहे तो तू भगल बाटे एगो चोर हरदम लुका है चोर ना रहिए आओ देसवा में अपन साख लड़ और यहाँ पे बताए सो मोहार जो ओफर फरवेटर योरदान एकलाथर फोर हरिकनिंग पेयल के को टॉपर ब्रोंटो अपी गईल है भैया बोले फरवेटर पॉलिटिक मूसी फन को लिख देना वार्डन ओक अबो पार्लियामेंटेरियन योरदान दैट इज फॉर रिकने और बोले हैं एक ने ने ने यानी कि अबोब के फोर्सेटर से बोले हैं एगो इंटरव्यू पे बोली सेगा Brunswijk, bole tu apre mangle rehles ok ke ka bole chansen to ki kechi yo tu for the left le ya ana bole ke ab tu kon chi batia hai bole ab jo for the left gel ta tu chilla bate ke santoki ok ke for the left le ge hega so khatan men se ab dekho ego admi ki namba yo yo besari er wangkang besari is ook verdag in de strafzaak van de Surinaamse postparbang idun bhaiya bhi ndp er mere khayal se raha aur ye sab abhi tulun jano hai पोस्पार बांग हुफदराज क्रोमोसुतो और के बंद रहा अब यहां दुई मिला और उमा का बोले हैगा फरदख्त बा और है बकेंद पॉलिटिक पर्सन सुपरमैन जोजो बेसारी एंड उस्मान वंका बेसारी सेन ओ फरदख्तन फन द ट्वेडे डील फन द स्ट्राफ साफ फसिर नाम से पोस्पार बांग में जोजो
Besari, ik wil top NDPR haar die bij de overige verkiezing aansluiten zijn, zocht bij de ABOP met zijn eigen politieke beweging. Wang Sang Besari komt uit de KTPI, een nieuwe stijl van KTP die bij de verkiezing van 2020 met de NDP heeft samengewerkt. Kali NDP, Yekademie en Karia Dada, Kromo Suto NDP, Terek NDP, Oro Yareki, Hoofdraad NDP, Oro Jojo Besari NDP, Sub Ehisab Des Lutke Baitke Hamar Janta, O Hamara Piare Janta Ehisab Ke Pir Paj Bariske Baitai. Dit is kan niet, mensen. Jullie moeten toch jullie ogen openmaken. Er staat hier duidelijk aangegeven wie die rovers zijn van ons land. Dat ziet u hier. En hier bataye gaye hai dosto. Bataye gaye Wang Sang Besari komt KTP ise. En de peeksenge kamkert. Er zijn een aantal verdachten in deze zaak. Naast de politici zijn ook ondernemers. Twee andere bekende namen die genoemd zijn van de verdachten is deze zaak zijn Anwar Hassan Khan en Gin Mardo. Kromo Suto Khali Malai bhaiya hum dekhila. Kono Anwar Hassan Khan bhi hai. Aur ye Hassan Khan joon hai. ये सोशल मीडिया पे बहुत जबर एनडीपी है भाई और बड़ी बड़ी बात पे यहाँ पे के बोले हैं तो ऑफ फ्राइडे 22 मई के सकवा फॉर द डॉक्टर गए हैं फरदख्त से इंडिया स्ट्राफ से आनखमेरे जिसका नाम बा तेलरलान हसन खान एगो आ हसन खान है और क्रोमोसुतो है हसन खान दुई गो बा भिकम सिंह है जो जो बेसारी है वांग संग बेसारी बड़ी बेसारी भैया और कार्तूरे जो है हरपाल है सारजो है तवाहिर अजूब एनवी है ग्लोबल अनक्यूटमेंट एनवी है एर्थ क्लीनिंग एनवी है एनवी गारामेंगो है होल्डिंग स्टिक्टिंग अनफार फॉर मिल्टी इलेक्ट्रियल सिस्टम एनवी इतना बड़का ग्रुप है जो हमारे देश के लूट के और चपड़ाई के बैठ गए है जो आज हमारे जनता रोवे है और बोले द साक्स टोन फॉर फॉर होर फॉर फॉर दख्त क्रूमो सुतो हसन खान जो जो बेसारी तिराल एंड एर्ड क्लिंग एनवी ओवर द प्रोजेक्ट रिशियल ट्वी एंड फॉर दख्त क्रूमो सुतो हसन खान वासन बेसारी कोर्चो इसे भैया बड़ी नाम है खाली मलाई रे भैया तीन क्वाट खाली मलाई है तो आजकल मलाई नो भैया ना खाली का बोले साते ही कैमा के बनाई के बनावे है देखो मलाई लोन हिया का करे है द राजमान फन फॉर दख्त कार्टो रेजो एस्टिक्टे अनफा aanvaardbaar die tevens waarnaam voor de raadsman van de verdachte Wasang heeft het verzoek gedaan tot uitstel van het verhoor van de verdachten moet hebben verhoor nakker uitstel kan ik je bhaag naar jij de zwamese bhaiya vervolgens zijn de verdachte Krumo Suto Hassan Khan zomaar is heb thoro mange heiga zomaar thoro mange bhaiya ke hem loog ke peeghig nikare ke is heb enemy ke jabar haat hai sab mil ke mange peeghigya ke nikare zodat Isab ke sakwa in de mar jai lekin PG ke koi na nikar paai bhaiya hiya bataye gaye hai fardakht Krumo Suto Hassan Khan Wasang Besari Karto Rejo Terlan Sarjo Multi Ertonal System NV bole over het project Waterland verder zal op die dag al verdachten worden verhoord Hassan Khan Tawahir Ajoub NV Terlan तो इस सबके फरहोर हुई भैया ओएम सबके एमा भैया हमारे लोग देखो हमारा देश में कौन कौन खाई के बैठल है तो अब इचिजुआ बहुफो वातर आवे है और हमारे जनता सुरीनाम के यही के रखे रिंग के स्टेम करके बैठाई से तो जो बोलियो तो बोलियो फे यहाँ पे ही कौन चीज करी यहाँ फे यहाँ पे ही के बातचीत ना हुए हमारी जनता यहाँ बातचीत हुए ये हमारा देश लूट के चपराई के और आज बैठल है और देखो भैया हम और आगे जाएला यांग लैंड बावर जो निकेरी में है अब खेती दूसर चीज करे खाली चाउर के खेती सपना मांगे करे भैया हमारा खेतियर जो है निकेरिया ने जवान जो है डायरेक्ट आउट शहर बकेस्टाल अस रेस डिस्ट्रिक्ट जहां पे हुए है अब बोले फुआ पे सब मांगे हैगा सिट्रस और नरियर बाना फ्रेश सुरतन हुआ मांगे सब लगावे सोमख बूरन बसकेकन इन मेडस ओवर अनप्लांटेड फ्रॉम दजेंडे सिट्रस बूमन और बोले उसे बोवे लगल है बोले चौरुए खाली सब ना करे लैंड बावर से निकेरी से ऑल इन डिफर्सी एंड
diversificeren. Oh, bhaiya, yahan pe bataiye, forsor zegt Waidu. Arre, bhaiya, welia Waidu, onder directeur, sabha manai se landbouw, veetil, visserij ke. Oh, bhaiya, peyal mase nikar ke jai ke, NDP me guzal la, si talwe na paaye raja, NDP jaise guzal direct sabha no ke onder directeur bana dit, bhai, ye hamara desh hai. Vierdaagse trainen van de citrus. Ook bole hega landbouw en voorlichting in Kiri. Ook Ryan Tukun, waarnemend directeur onder afzet LVVK. Toen wapen we ja, wie eetje joiga, te malailun zijn barka barka postpave, jepse geil he. Iedereen denkt richting oliegas, maar we denken ook. Kijken naar onze eigen voedselproductie en voedselveiligheid. Teel de Guyana, Minikere, Baki Garitai, Wahaper Oisnehe Dosto. Dus jullie moeten niet denken, Kitelwa Nikrelegi 2028 mee. Tahamlon hiape, na chap e gorpe, chijua aise nahe. Want deze regering die heeft nog geen enkele voorbereiding gedaan, mensen. To aanplo kun je hem bata dete he. Abdeko, minister. Stanley Suro Paviro, Ouhega Malai Pino Bhaya, Ouhega Khron Balait en Bosbeheer ke minister ba, Obolehega, Ouhega Ruben Ravensberg hega, algemene directeur hega stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB ke, geen andere keuze heeft dan het ontslag. Verzoek tegen hem in te trekken. Suro Paviro snijdt zichzelf in de vinger en moet zijn Excel eigen braksel inslikken. Door af en zwaai bole hega GBB-ke minister bole hega Ravensberg-ke eerder voorgedragen voor ontslag. Oké, mange ontslag de we. Oro, de malayu, mange pindere to bhaiya teke padia ke mange hega ontslag kere. O bole waarna directeur door ontslagcommissie werd gehoord. Per schrijver 21 mei Suropa weer een verzoek echter officieel ingetrokken. Doen ook een lerha. Obole intrekkelijke discussie over salarisverhoging en missief. Volgens Ravensberg stelde de minister dat hij van de vorige minister salarisverhoging had gekregen zonder dat daarvoor een missief was opgesteld. De appanapan salaris te isep tjalhalu bhaiya jaisi mangyo. Ik erbare ma Mathura ka bole he. Aur Mathura bole hoofdraad moet volgende wet zelf aanwezig zijn bij de hoorzitting. Aur hoofdraad te door se hun ap het terras pe bait ke. Aur saag advocaat se ladwawe he. Aur hiya isep OM nu sab koi lade he. Parlementariër Krishna Mathura se bole hega. Financieel klimaat hoofdraad ex-minister hega. Financieel ke jon chori karke bhagal he. Persoonlijk aanwezig moet zijn bij de DNA. En daar ben ik helemaal eens met deze mevrouw. En hier heb je betaald. Hoofdraad was niet lijfelijk aanwezig. En werd vertegenwoordigd door zijn advocaten. Door de raadsmannen werd de vraag opgeworpen. In hoeverre de justitie juridische en formele procedures zijn gevallen. En ik heb het betek. En je bhagal heb je lukaan heen. Toen ik heb koei pakker na pawe heen. Hamare janta. Je baat heen. अब चलो भैया हम आप लोग के लेकर चलते हैं ईरान की ओर ईरान से ऑपर्स लेडन है बोले हैं अनफाल फेस अमेरिका के बोले हम लोग के रेक्ट रिएक्शन करेंगे नेचुरली तो देश में जो कोई दागे दान मुझे ये सेल फर्दीदख तो यहां यही बात बोले हैं का बोले हैगा बोले कि वेलकम और बोले हैगा वे हैव अ रेक्ट ऑन टू रिएक्शन En dat klopt allemaal mensen. De toerdees met koei aiga. Lade. Oh ja, wat daar. Iran heeft een man excuseerd. Vanwege vermoedelijke spionage voor Israël. Meldt het persbureau. Oh, rego. Admike Maardhaar is Iran. Bole Iran ke. Irak en Israël ke spion raha. Iranse revolutionaire garde. Zegt een Amerikaanse drone uit de lucht hebben gehaald. Het zou gaan om een drone van het type MQ-9 zoals op de bovenstaande. Ja, voor wat hij geeft. Ego in Amerika ke drone gereisega. Iran. De VS beweegt met de dag verder en verder weg van zijn voormalige status, zegt hij. Iranse
opperste leider John Higa Bole, Iran heeft recht om te reageren over de schending van staakt het vuren. Oro Bole, Motabo, Kameyee Bole, he. Golfstaten niet langer met een skilled jagra zullen zijn voor Amerikaanse militaire basis en dat de VS geen veilige haven meer in de regio zal hebben. Iran het recht heeft te reageren op enkele schending van de Amerikaanse staakt het vuren. Volgens de staatsmedia heeft Iran de Amerikaanse MQ-drone neergehaald, mensen. Dat weten jullie allemaal. We gaan naar een liedje, mensen. Daar komen we straks weer terug. Ego Tropic Salsa Cuban, que guita maploco, sunainge.

मेरा दिल ही कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से हम करते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम की समाचार को लेकर। दोस्तों सूरीनाम में भैया देखो क्या हो रहा है, बोली जोनी आज तू रूफन उफन के बारे में ना बताइले, जरा रखेरी अखेरी के बाद बतावे, जैसे रहते दोस्तों आपको बताते रहते हम। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, इंस्पेक्टर भैया एगो होफ इंस्पेक्टर सोना ओना पहिर के गैला त्रेम करे भैया, सवेरे सवेरे गैला जॉगिंग करे, चले दौड़े गैला, और दौड़ते दौड़ते बेचारा ऊपर तो होफ इंस्पेक्टर है, होफ इंस्पेक्टर है गैला जॉगिंग करे, बस उतरे में भैया जॉगिन अतवार अतवार के बातचीत है, आई जॉगिन करत ना कसाबा होलो वेख में भाए, हुई दौरत ना सोना होना पहिर के कोई जाए जॉगिन करे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर गैला जॉगिन पहिर के और दौरे भैया उतरे में भाई सबन ओके पटकीस है, ओके पटकी से भैया ओकर केती हांगर अंगूठी ताहत निकारी से, और जो निकारी से जबरदस्ती रो फरवंत काली वही ना निकाय से दांते काटी भी एक के खूब भैया, और इंस्पेक्टरवा के बड़ी मार मारी से खूब में सांदल करी से इंस्पेक्टरवा के, और वही मट्टी में दबायर ऑफ द खरन खुद्र, और भैया हाथ गोड़ी सब फूल गए है इंस्पेक्टर के हाथ और फूल गए है, और जितना लिंकर हाथ में दांते फांटे सब काटी से भैया, और ले के सब चोरन फरार हो गए है, बताए गए हैगा बताए गए हैगा ना द रोस लुखन द फरदाख्तन ब्रोम फिट्स पे पेल भागल है भाई, और चल गए अब तक तो ना पकड़ान है। तो सोचो हम लोग के देश में सूरीनाम देश में दोस्तों सूरीनाम देश में जो इंस्पेक्टर की ये चोर रूफ कर ले तो हम लोग कौन खेत के मुल्ली है भैया, हम लोग के साथ का हुई। अब देखो भाई एक ऑटो अपरे के एगो ऑटोमोबाइल्स अनखिफ्त करी से बोले पोखिंग तो दौचला है, अब बोले दिन सेल्फ क्लाक इन तेखे को पुलिसी आदमी पुलिसी को पर क्लाक करी से गा, ये रमिया ऑटोमोबाइल्स तो बोले इसको तू ओकर साथ का करी से, एगो 28 तक यार के ऑटो ऑटोमोबाइल्स थे सदिचर अतवार के रात के मेल करी से सिपाही में अनखिफ्त करी से tegen hem had gedaan wegens poging tot doodslag. Volgens wordt de VS een vriendin help met de verhuizing. Ik een vriendin kan help kunnen trahan. Verhuizen kreken. Ze waren bezig goederen uit een huurwoning te verwijderen en weg te brengen. Verhuizen kan aan hem ja. Op het erf bevinden zich twee woningen waarvan de politieman in een van de huizen woonachtig is. Operatie met twee gerraan. Ik ga waar mijn sipahi bij huur kunnen trahan. Volgens VS had de politieman zijn voertuig. Is er parkeerkeller रहा दत है एर मुइलक लंग्स कौन रहेगा, बोले हैगा ओकर बगलियास न पास हो बिस्कू तो इतना मुइलक बहुत हुआ पार्केर कर ले रहा, बोले मैं मुइते बोले हम फोर भाई भाईली है फरकलार द फ्लका फेर दा द पुलिसी मान फॉर फोकस हम आम क्वाम एंड द सही स्पीकर फॉर द फुरटेक फर्नील द, बोले हमार ऑटो का सही स्पीकर टूरी से, अब बोले है मार्क्ड दा रोब दैट मोमेंट हिन प्रॉब्लम फान, बोले हम कुछ ना बोली है मार रेस रेक स्ट्रीट ना द पुलिसी बिरो लेडी नहीं हमें हम गईली है, अब बोले अन हिफ्त कर ली है इन तुसर हाथ द पुलिसी मान अल मेल द खमाक दैट द ऑटोमोबाइल्स ऑफ हिम सो सेन इन खरीदन द पुलिसी मान ब्लीव दैट बाय ऑन खदेर, बोले हमार ऊपर उचलाई से बा बोले हमें कुछ ना भइले, बोले उल्टे आउ करी से अनगिफ्त ना त सेन गहोर्ट वर्थ है सोंदा हिन गसोंदन द साक मेट बेट्रेकिंग टू फर्नीलिंग फॉर अ फुरटेक फॉर अ फेयर्स इज ओवरगेड्रंगन अफदेलिंग फॉर ऑन ऑंडरसुक पर्सनल साक में, अब एकर बारे में गइल है तो सिपाही जे अपर क्रिमिनल खदराख जे करीगा भैया, त हम लोग के देश के केकर ऊपर तो बाउ करिए भैया, उसको तू जे आदमी हुआ रहे त सोचे हमार बराबर और कोई है ये ना है, हाँ सोचे हमारे बराबर कोई है ये ना है।
आप लोग को बीते हुए दिनों में बताए थे कि एसएलएम के मोतरवा में 500 किलो कोकेन सब लुकवाए रहा, जाने ना मौसा कोनो पकड़वा दे रहा, तो एक बारे में कितना आदमी पकड़ा रहा, एगो फैफन देर तक यार किशोर चांद भी पकड़ा रहा, एगो त्वेये फिर तक यार किशोर चांद, और बोले हेगा और सिर्फ मार्ट के सखवा आन खाऊद रिसर्च पकड़े रहा, मिलिटेर पुलिस पकड़े रहा, और बतावे त्वेये किशोर चांद वर्ड इरफान फरदाख 10 नवंबर 2022 में 500 किलो इलीगल लैंडिंग्सबान इन फालावात्रा कबीर ओना सिपाल विनी के बतिया भैया ने सिपाल विनी में रहा फालावात्रा में ओक सौदन से नाबे द लैंडिंग्स बार ऑफ द आउटकेक हेवन हस्तान में से ते इसे ताकत रहा और बोले 17 तारीख नवंबर में ड्रिक्स फ्लिक्टेक्स और सेन खलान इन फालावात्रा कबीर नर आन लेन इन दार फ्रॉम फर्ट्रॉक और खमेंग द पुलिसी इन हीडन naar de locatie om onderzoek te doen. Daar troffen de Westdienaren illegale landingsbaan en een eenmotorige vliegtuig aan. Het toestel werd gestript en had beschadigde vleugels. Een drugshond gaf een positieve melding in de vliegtuig. Op 16 Satsorago een baril. Een 50 liter kerosine op er aan. Ongecontroleerde politie al voertuigen. Een paar bollen, 500 kilo paise. Bij jij chou zo naar haar hoe. Toen ja, nee, Suriname. Kehaal toe. Biswaas naar Rijge, bhai. Daar gaat het om. Hem beschuldig koeik naar Karila. Lekin biswaas naar Rijge, henani. Karen ki je hoe druk je pakraa he. Te ketna bolle pisan jarja he. Bolle druk vroegel he. Sko tu lukke ghar me tu dikhe kon kon oto chalawe bhaiya. Te bolle i paiswa. Tu paisa se kamaile baate. Mehnet se kamaile baate. Ki druk ke paisa se kamaile baate. I sab Suriname me. Hoe bhaiya. Aap dekho ego brandweer man. Tevens beveiligers man. Verlies dit wapen. Na de verkeersongeluk. Reining करी से को ब्रांतवेर के एनमी अब फैलक के भी एनमी रहा बस अब लेकर पिस्तौल वे चोरी कर ली भैया तो सोचो हमारा देश में क्या हो रहा है अब वे बता रही सिपाही के बारे में भैया सिरादन एंड खेल बैठ खमाक अन बेय इन ब्रक वोडे को होफ इंस्पेक्टर सुरिनाम में भैया ओकर घर में चोर घुसल है यूस्टिनस स्ट्रैट में और

Inspecteur Joachim beschuldigt naar Carilla Dostum, maar het is vrij logisch. Zoveel waarde in je huis, is dat wel verstandig, inspecteur? En hoe komt die Joachim Media Suriname ke chupcha baithe bhaiya una jahe khoje ke inspecteur tor gharwa mein itna cheez mila chori bhai kahan paaye rahi sab cheez un tu aur kitna tor salaar hai se dat sun se dekho bhaiya yahan khai ke piche churi ke bhokawal hoige bhaiya bhai bhai khai ke piche churi भोकौल हो गए है तो आज हमारे देश में खाई के ना है का भैया कि खाई के पीछे भाई भाई अपने वे जान मार देवे है और छोड़ी भोकौल कर लेवे ना ने दोस्तों निया बताई गई है का बाका पासी वेख कहीं पे दुई भाई भैया अपरे में लड़ ले से एट मोन ने इन स्टेक परते ही बोले तुन एसएस दैट वेकर द बोले से ब्रूर ओम एटन हाथ खफरा और बोले एगो भाईवा खाइक मांगी से एगो भाईवा ओके वेकर करी से वेर का बोस इन द रिक्टिंग है फॉर नीले बेड वोनिंग फन से ब्रूर ओके घर और तुरे लगा लेगा अपकर्षमेन बोर्ड शत सबस्कार कर दी से खाई के पीछे भाई ओके खाइक ना रहा बोले हेगा फॉर फॉल्कस ना बेतन वाना ने सिचुएशन एस्केलेट द और द विस्लिंग इतना भइल है हाथ हाथ से लड़ने बाटे कुश्ती भइल है तो एगो भैया छोरी धल ले रहा अपन जे बे निकार के इक्वा भाईवा के दुई रे पेल ले से भाई मैं तो स्टिक होत अप एट होस्ट स्लान और बोले हर हैंडल ऑन द टेकिन एटन क्री बे द ब्रू से ना अपस्टेमिंग और दोनों के पकड़ के ले गए है तो यहां भाई भाई के ना है सन्ना भैया खाई के पीछे जान ले ले हैं का बोले हैगा लाठी से मारे छुड़ी लेवे तो का हमारे देश में सुरिनाम में खाई ना रहेगी का दोस्तों कि जनता आदमी लोग ऐसे लड़े हैं खाई के पीछे दिस इज तो बलाखलक मींस दिस इज हील एरक बलाखलक अब देखो भाई यहां पे बताए गए हैं 20 बरिस के जहल पाई से एक आदमी 20 बरिस के जहल पाई से और बताई गई है का मन करेक्ट 2024 दो लग स्टेक पस्टिक पड़ते ना हेल्प खरूप मुदर बे वोनिंग ओवरफॉल तो यहां मैवा के वोनिंग ओवरफॉल होत रहा फरदाखते को ट्विंच एल हैगा ओकर नाम बा क्वाइकी भैया बे नाम है बोले हैगा 20 बरस के खवेल का वोनिंग ओवरफॉल के जगह पीर पॉइंट वेख के बात जी थे और बोले द ओएम जो रहा बोले फॉर लीडर एके बोले हैगा 19 अप्रैल 2024 में drie gemaskerde gewapende mannen drongen toen een woning binnen en overvielen de aanwezigen. De situatie liep fataal af toen een van de slachtoffers reageerde op het hulpgeroep van zijn moeder, die als eerste door de aanvallers werd beklaagd. Ik wil hulp op mijn mangische, maar zo is er een churi bong deze via. Ja, wat hij heeft uit de strafrechtelijke onderzoek blijkt dat L het slachtoffer de dodelijke mesteek heeft toegepast. De man hielp zich daarna langs steen, schuin voor de politie. Look andra, bakie brokopondo me jij, ik zeg van oké pakalese. Bij die wedstrijden gaf hij een valse naam op en verzette hij zich tegen de Westdienaren. Maar ik geschulden heeft gemaakt van een gekwalificeerde dood. Het opgeven van zijn valse naam. Toen ik pakker kiesje paai, ben ik erin aan. Bies briske saja paai ze. Ik vind dat de 20 jaar te weinig is voor deze persoon. Hij moest het meer krijgen toch mensen. Daar gaat het om op de kodos toe. SLM ke toriya bhiya

आइले भैया कांतोन रखतन तुन तक मई के और वहां पे कई मिला के पकड़ के बंद करी से क्या मां बताए गए हैं 500 किलो कोकीन के बारे में एसएलएम के बारे में भैया द ड्रग्स वर्डन aangetroffen इन द रेंटे अख्तर द कॉकपिट फॉर द टूस्टेल फॉर सुरिनामस लुखफास प्रस्क्राइब बाय एसएलएम जो नंबर बताओ तेरे इयाला भैया यहां पे उसके बोर कंप्यूटर से भैया जो प्लेन उड़ावे हुए को खफार चीज भाई द हुआ पे ले जाए कोकीन 500 किलो धरे रहा द राजमान फॉर अफरदाख्तन AO en OZ dienden daar opnieuw verzoek in tot opschorsing voor de vrijheidsbenemende maatregelen onder voorwaarden, bhaiya. Ab ikar baare mein kaise hoga, kaise nahi hoga, aap log ko hum jaroor bataayenge. अब देखो भैया WHO इबोला उत्पराग भेल है रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में भैया उगांडा में जहां पे 220 आदमी मर गए है हॉस्पिटल्स वर्क नेमर्स दिस इन दैट हार्ट बेस फेस्का बोले फरीनिंग फन इकोनॉमिक्स इन सुरीनाम बोले हम लोग के देश के कर्जा जो रहा बोले 700 मिलियन और ज्यादा Volgende organisatie is de totale schuld nu 4,1 miljard eind juni 2025 meer aan. Op tjehardeke wege 4,8 miljard per eind maart 2026 meer. Omgerekend Surinaamse dollar gaat er om een stijging van 154,8 miljard naar SRD 180,7 miljard. De cijfers zijn opgenomen in editie van 69 van Economische Blad van VES, waarin de vereniging een analyse maakt in de schuldrapportage van 25. Toe Simon blijft maar kardja lewe. Oh, hamar dis pelaige. तो ये बात है भैया यहां पे बेल्जियम में एको बड़का अरेडिंग भेले एको स्कूल बस एको ट्रेन से भाई वहां पे मंगलवार के स्कूल बस आनखरीद ऑफ अ स्पोरवेग ओवरट्रेडिंग ओवरगांग सॉरी मेंसे मेरेतर इंसिडेंट फॉर अ बस सेन omgekomen mensen बहुत दुख के बात है तो ये बात है हमारी जनता और यही से हम अपना समाचार को आज खत्म करेंगे हमारे यारो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद हमारा तुम्हारा मुलाकात फिर मिलेंगे राम राम नमस्कार जॉनी नंबर वन है हमारा ना

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तू पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे, तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है, तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अरे अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आम सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नेखंतीन्द्रियन तख्तकां। ये फिल्म है दोस्तों और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

मुनीम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खैन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तीन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीफन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों, और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है, और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

होगा मूवी के नाम थे नागिन का, ये सॉन्ग सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों, ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का, ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकी लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कई दिया है, प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में, तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है, और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

और छोटी सी उम्र में रोग तो लग जाते हैं हमारे दोस्तों, और जब रोग लग जाते हैं तो वो कभी नहीं। मूवी का नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नाइटी जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर फिर एक बार चलते हैं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एन जसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों।

आंच का जोंग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मिस मैरी की ओर हम जाते हैं।

0: To enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिरी चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे। हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशा बहुत मस्त था ना, तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे। और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं, तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर, क्या हो गया क्या नहीं होगा, तो आओ चला जाए। और वो है आजा सनम।

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मरते बड़ा दिल जर्त नाटकी लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमा श्री मोहम्मद रवि मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं, तो हम चलते हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है। क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Howard, the heart of the millions, Mukesh, मूवी के नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगती हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

छोड़ दो प्याले फेंक दो बोतल मेरे पीछे हो लो राम बोलो राम बोलो राम बोलो।

0: आया अब दरवाजा खोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत, अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप भी इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में, और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।
2: इन

जब दिन हसीने दिल हो जवां परमा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टैंड 1958 का परमा श्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले है। जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जी लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है, और नचजे लता पर माँ श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियाँ बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों, और ये क्या है, ये क्या है आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं, आओ फिर प्यार करें, इसे कुछ लिखा है दोस्तों, और
1: आओ प्यार करो,
0: आओ प्यार करो यहां पर लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

फन होम टेल हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रा

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है सोपन विज्ञान।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

संबंध तो सुधामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं।

सुनने वालों, तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। हंस के शकुन। आज मैं आप लोगों को हंस जो पक्षी है उसके क्या क्या शकुन है उसके बारे में बतलाऊंगी। हंस के दर्शन, उसकी आवाज़ सब शुभ होते हैं। यहाँ तक कि प्रवास करते समय यदि कोई हंस का नाम लेता है तो उसकी यात्रा अच्छी होती है। प्रवास करते समय यानी यात्रा पर जाते समय, एक बार बोले तो चोरी का भय, दो बार बोले तो धन की प्राप्ति, तीन बार बोले तो दुर्घटना का भय, चार बार बोले तो किसी से झगड़ा, पांच बार बोले तो राज्य से सम्मान मिले। सुनने वालों, यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और हंस एक बार बोलेगा तो उससे हमें चोरी का भय होता है कि चोरी होगी। अगर वो दो बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होगी कि हमें रुपया पैसा मिलेगा। अगर हंस तीन बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय कि हमें चोट लगने का भय हो सकता है। अगर हंस चार बार बोलेगा तो किसी से झगड़ा भी हो सकता है सुनने वालों, और पांच बार बोलेगा तो राज्य से सम्मान मिलेगा।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। टिटहरी, टिटहरी एक पक्षी है, छोटी सी है चिड़िया जैसी, और ज़्यादातर खेतों में बोलती है। अगर वो हो तो उससे क्या लाभ है, अब मैं ये बताती हूँ आपको। टिटहरी प्रवास करते समय इसकी आवाज़ शुभ होती है। जब ये पक्षी बोलता है और हम यात्रा पर जा रहे हैं और इसकी आवाज़ कानों में पड़े तो शुभ मानी जाती है सुनने वालों। मोर, मोर तो आप सबको पता है सुनने वालों। मोर भूख से पीड़ित या उड़कर बाईं ओर आकर बोले, मिष्ठान की प्राप्ति। अगर मोर पक्षी हमारी बाईं ओर आकर बोलेगा तो हमें मीठा खाने को मिलेगा या मिठाई खाने को मिलेगी। यदि प्रवास कर रहे व्यक्ति को देखकर बोले एक बार तो धन की प्राप्ति, दो बार बोले तो स्त्री सुख, तीन बार बोले तो राज्य दंड का भय, चार बार बोले दुर्घटना का भय, पांच बार बोले कार्य की सिद्धि। सुनने वालों, मोर भी अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को देखकर अगर वो एक बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होती है, दो बार आवाज़ करेगा या बोलेगा तो स्त्री का सुख होगा, तीन बार बोलेगा तो राज्य में दंड का भय कि हमें कोई दंड भी मिल सकता है किसी भी कारणवश, अगर चार बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय तो चोट लग सकती है, पांच बार बोलेगा तो कार्य की सिद्धि। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी सुनने वालों।

मैना, हमेशा हम तोता के साथ मैना की कहानी जरूर सुनते हैं। सुनने वालों, तोता मैना का एक जोड़ा होता है। तो मैना, यदि प्रवासी को मैना दिखे तो राह में अशुभ, किसी से झगड़ा तथा धन हानि। बिल्कुल सामने मैना दिखाई दे तो चोर डाकुओं से धन की हानि। पीछे की तरफ मैना दिखाई दे तो मित्र से धन हानि। बाईं ओर मैना दिखाई दो पत्नी को रोग। दाईं ओर मैना दिखे किसी पूजनीय से मन मुटाव। सुनने वालों, जब हमें मैना राह चलते दिखाई दे तो अशुभ, किसी से झगड़ा या धन हानि होती है। हमारे बिल्कुल सामने उड़कर आ जाए तो चोर और डाकुओं से धन की हानि होती है। हमारी पीठ पीछे आ जाए तो मित्र से धन की हानि होती है। बाईं ओर से आ जाए तो पत्नी को रोग होता है। दाईं ओर से आ जाए तो किसी पूजनीय से मन मुटाव, कि जो आपसे बड़ा है, पूजनीय है, उससे हमारा थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, हम उससे गुस्से हो जाएंगे या वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना है ये हमारे महान गायक सूरीनाम के महान गायक श्री रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बटेर, बटेर भी एक पक्षी है। यदि यात्रा करते समय बटेर दाहिनी तरफ आगे आकर वापस लौटे और यात्रा में वापस आते समय बाईं ओर आगे जाकर वापस लौटे तो उस व्यक्ति का आने वाला समय अति उत्तम व्यतीत होता है। तीतर, तीतर भी एक पक्षी है सुनने वालों। तीतर प्रवास कर रहे व्यक्ति के यदि तीतर बोलता है दाईं ओर बोलकर पुनः बाईं ओर उड़े तो उत्तम फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थात पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर उड़े तो अर्थ लाभ होता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि। पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले कार्य सफल नहीं। उच्च स्वर में आवाज़ करे कार्य में सफलता। विषम संख्या में आवाज़ करे शुभ। आकाश की ओर मुँह करके धन हानि। दोनों ओर आवाज़ करे उत्तम शगुन। सुनने वालों, तीतर अगर किसी यात्री के दाईं ओर बोलकर पुनः बाईं ओर उड़े तो उससे उत्तम फल अच्छा फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थ पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर बोले तो अर्थ लाभ कमती मिलता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि तो उसका गलत परिणाम होता है सुनने वालों। पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले तो कार्य सफल नहीं होता। उस स्वर में आवाज़ करे कि ऊंची आवाज़ में बोले तो कार्य में सफलता मिलती है सुनने वालों। विश्व संख्या में आवाज़ करे कि और भी ऊंचा बोले तो शुभ होता है सुनने वालों। आकाश की ओर मुंह करके बोले तो धन की हानि होती है। दोनों ओर आवाज़ करे तो उत्तम शगुन अच्छा शगुन माना जाता है सुनने वालों।

खंजन, सुनने वालों खंजन भी एक पक्षी है, यदि यह इन स्थानों पर बैठा दिखाई दे। घुड़साल, फिलखाने, बाग, महल, लिपि भूमि, दही का बर्तन, छायादार पेड़, फूल पत्ते, फल वाला वृक्ष, तो धन लाभ की आशा। नदी, तालाब, कमल का फूल, गाय की पीठ, पत्ते उपले, दूध वाले पेड़, भवन के मुख्य द्वार, अगर इस जगह पर दिखाई दे तो समस्त वेदियों का नाश। लता, कांटेदार वृक्ष, सूखा वृक्ष, पत्थर, अधजली हड्डी, मदिरा के घड़े, सुने घर में यज्ञ स्तंभ, अपमान और रोग प्राप्त होता है सुनने वालों। नीलकंठ, नीलकंठ तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत नीले रंग की गाय है, यदि यह दिखे तो दाई और सदैव फलदाई, सामने दिखे अनेक विधन। नीलकंठ और कौवा दोनों दाई और उड़े और कौवा आगे निकल जाए धन हानि, इसके विपरीत नीलकंठ आगे निकल जाए यात्रा सफल, धन का लाभ होता है सुनने वालों।

हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, श्यामा चिड़िया, आपने श्यामा चिड़िया का नाम तो सुनना सुना ही होगा, क्योंकि रामायण में जब मन का 108 है उसमें भी राम जी कहते हैं श्यामा चिड़िया तू ही बता दे कि सीता जी कहाँ पर है। यदि श्यामा चिड़िया दिखाई दे बाई और बोलती कोयल अच्छे फल, दक्षिण और बोलती अनिष्ट फल, सामने आकर बोले यात्रा स्थगित के संकेत कि यात्रा टाल देनी चाहिए, पीठ पीछे बोलती शुभ सूचना सफलता, प्रसन्न भाव में क्रिया करती हुई सामने कार्य सिद्धि, प्रसन्न मुख इधर उधर फुदके धन लाभ सफलता, दाएं भाग को खुजाती हुई शत्रु नाश मित्र से लाभ, दाएं भाग को फड़फड़ाती हुई विजय, दोनों ही भागों में शुभ समाचार सफलता, चोंच पैरों से बाईं आंख खोलती हुई वस्त्र आभूषण लाभ, भोजन की तलाश करती हुई सिद्धि अच्छे भोज्य, भोजन पर झपटती हुई अति शीघ्र सफलता, रमन करती हुई स्त्री से लाभ, सूखो बियाबान से हरे भरे की तरफ आते हुए उत्तम फलदायक उन्नति की सूचना, दासियों में आ मिले प्रिय जन्म मिलन, पैरों से दाहिने नेत्र को खुजाती हुई प्रिय जन्म मिलाप, पूछ जल्दी जल्दी ऊंची नीची करती हुई प्रेमिका मिलन, चोंच से सामने या गुप्त अंगों को स्पर्श करती हुई सुंदर से समागम, पैरों से मुंह खुजलाती इच्छित वस्तु प्राप्त, निर्जन सरोवर में नहाती हुई भू संबंध संपत्ति का लाभ, टेढ़ा मुंह करके देखे या भाग जाए झगड़ा हो, आलस्य भरी या बीट करे धन नाश विपत्ति, मुंह के आहार को नीचे फैलाती हुई सांचे धन की समाप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हुई एक जगह झगड़ा दूसरे पर सफलता।

सुनने वालों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब बातें स्वप्न विज्ञान से निकाली गई हैं। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो हमारे सूरीनाम के महान गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में था।

सुनने वालों, मैं आप सबको सुना रही थी श्यामा चिड़िया के बारे में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। जोड़े से अलग भागे, स्त्री से कष्ट हानि, पति पत्नी दोनों के बीच में से पहले चिड़िया फिर चिड़िया निकले, निश्चय कार्य में सिद्धि। इसके विपरीत पहले चिड़िया फिर चिड़िया निकले, सिद्धि में संशय। नीचे से उड़कर ऊपर जाए, उत्तम फल। नीचे की तरफ जाए, अवनीत की सूचना। बाई तरफ बोलती हुई अच्छी, दोनों तरफ बोलती हुई अति उत्तम फल। उड़कर किसी गंदगी पर बैठे, यात्रा टाल देनी चाहिए। किसी पतंगे को पकड़ने दौड़े और एक के बजाय दो पकड़ ले, तो दो गुना लाभ की आशा।

पशु शकुन विचार। अब हम पशुओं की ओर चलते हैं सुनने वालों। बिल्ली संबंधी शकुन। यदि यात्रा आरंभ में बिल्ली हमें मिले तो क्या क्या शकुन होते हैं सुनने वालों, और क्या क्या हानि होती है। बिल्ली अगर रास्ता काट ले हानिकारक, बाईं से दाईं और रास्ता काटे निष्ट फल, मुख में आहार लेकर आए शुभ, मुख में मांस भरे सामने आए सफलता, किंतु बोले भी तो शुभ, खाली मुख बंद करे शुभ नहीं असफलता, परस्पर लड़ती दिखे तो अशुभ, बाईं ओर रहे शुभकारी, घर लौटते समय दाईं ओर रहे श्रेष्ठ, सोते समय ऊपर आ पड़े मृत्युकारक, किसी के पांव सूंघे स्वास्थ्य खराब रोग, माथे को चाटे राज भय पत्नी विरोध, किसी स्त्री के हृदय को चाटे पुत्र को अनिष्ट कारक, किसी स्त्री के पांव को चाटे अहित कारक यानी हानि, घर में आकर शीघ्र चली जाए रोग शत्रु का नाश।

सुनने वालों देखो, हमें अगर रास्ते में बिल्ली दिखाई दे, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर हमारा रास्ता काट ले, तो वो सभी जानते हैं कि हानिकारक है, वो अशुभ माना जाता है। अगर बाईं ओर से दाईं ओर हमारा रास्ता काटे तो नेष्ट फल, वो भी थोड़ा सा अच्छा फल है। मुख में आहा लेकर आए, अगर उसके मुंह में कुछ है तो शुभ माना जाता है। सुनने वालों, मुख में मांस भरे सामने आए तो सफलता होती है। सुनने वालों, किंतु बोले भी तो, अगर बिल्ली बोलती है तो शुभ माना जाता है। अगर मुंह में कुछ भी नहीं है, खाली मुख है, खाली मुख शब्द करें तो असफलता होती है। सुनने वालों, अगर बिल्ली लड़ती दिखाई दे तब भी असफलता होती है। सुनने वालों, बाई और आ रही हो तो शुभ कार्य, तो अच्छा माना जाता है। घर लौटते समय दाई ओर से दिखाई दे तो श्रेष्ठ, तो भी अच्छा माना जाता है। सुनने वालों, सोते समय ऊपर आ पड़े कि अगर कोई सो रहा है तो किसी ने घर में बिल्ली रखी हुई है, तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों, वो मृत्यु का कारक होता है, कारण होता है। किसी के पांव सूंघे, अगर बिल्ली किसी के पांव सूंघती है तो स्वास्थ्य खराब और वो रोगी हो जाता है। और माथे को चाटे किसी के तो पत्नी विरोध, तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है। सुनने वालों, किसी स्त्री के हृदय को चाटे तो पुत्र को अनिष्ट कारण, तो पुत्र को हानि पहुंचती है। सुनने वालों, किसी स्त्री के पांव को चाटे तो अहित कारक, तो वो भी अशुभ होता है। सुनने वालों, घर में आकर शीघ्र चली जाए कि घर का चक्कर लगा के फिर बाहर चली जाए, तो रोग और शत्रु का नाश हो जाता है। सुनने वालों,

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सुनने वालों, आपका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो आप हर समय सुनते हो। अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर देर पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। सुनने वालों, अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें करके देखें तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा।

जीवन में परेशानियाँ चाहे जितने भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, जीवन में परेशानियाँ तो सबकी होती हैं, चाहे जितनी भी हो, अगर हम चिंता करेंगे तो वो और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती, और खामोश होने से थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम भगवान का शुक्र करेंगे कि परेशानी आई है तो भगवान ही दूर करेंगे, तो उससे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, हमें हर समय परमात्मा का, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए।

किसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठना व्यर्थ है। आज का दिन जो किस्मत से हमें मिला है, यही अवसर है, इसे जाया ना करें। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कठिन रास्तों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन हो या मनुष्य के विचार। एक बार स्तर नीचे आ जाता है तो जोखिम बढ़ जाती है। मन के अनुकूल हो तो हरी कृपा और मन के विपरीत हो तो हरी इच्छा। जिसने इस तत्व को धारण कर लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। देर मैंने ही लगाई है तुझे पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सिर झुकाता गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया।

नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना इससे अच्छा व्यायाम दिल के लिए कोई और नहीं। सुनने वालों, मैं आप सब से यही आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सबको बातें बताई उसमें से कुछ ना कुछ आपने अवश्य लाभ उठाएंगे। और ये सब मैं स्वप्न विज्ञान से खोज खोज कर लाती हूँ, तो आशा करती हूँ अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट देना। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। आपको शांता की भी स्वीकार है यहाँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
1: उदास बैठे उनके लिए कुछ उदासी का चलाया जाए।
2: जैसे आप कहिए राजेंद्र जी, मास्टर जी तो आप ही हो, और जैसे आप कह ही चुके हैं कि जो उदास बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि अभी संदेश तो हम सब रखने वाले हैं, और आज का कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और भी लोग भी सहयोग दे रहे हैं। तो मास्टर जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हरिओम सरन जी ने, और ये तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े, तो हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम में हम सभी जुड़ जाएंगे।

0: उदासी मन काहे को डरे। सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने ये सुंदर सा गीत जो जाकर के हरिओम सरन से हम सब सुने और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर जी, आपके और संदेश जो आज आप रखने वाले हैं आप रख सकते हो।
1: जैसे कि बातचीत चली थी कि आज गुरु की महिमा के बारे में वर्णन होगा, गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। जो पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, जैसे भी स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी और ये सब चीज चलता है, और पहले गुरुकुल होते थे, गुरु के सानिध्य में लोग पढ़ाई करने जाते थे और वहां से बहुत सारी चीजें सीखते थे जो कि उनकी दिनचर्या यानी लाइफ पूरी लाइफ काम आती थी। तो क्या क्या सीखते थे ये सब चीज सीखने को मिलेगी। हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी, आर्यवर्त के गुरुकुल के बाद ऋषिकुल में क्या पढ़ाई होती थी, ये जान लेना आवश्यक है। इस शिक्षा को लेकर अपने विचारों में परिवर्तन लाएं और प्रचलित भ्रांतियां दूर करें। भ्रांतियां का मतलब होता है कि जो कंफ्यूजन है आजकल जो चल रहे हैं उसको बोलते हैं प्रचलित भ्रांतियां, उनको दूर करें और पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसके अनुसार अगर चलेंगे तो वैदिक शिक्षा यानी जो सबसे पुरानी शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा बोलते हैं उसको, उसके अनुसार बहुत ही अच्छा रहता है। तो क्या क्या शिक्षा थी, नंबर एक पे है अग्नि विद्या। अग्नि विद्या सीखते थे गुरु के पास। फिर वायु विद्या, वायु मतलब एयर है, और जल विद्या पानी, अंतरिक्ष विद्या। जो साइंटिस्ट आजकल स्पेस में है उनको अंतरिक्ष विद्या बोलते थे, बहुत पहले से सिखाई जाती थी। पृथ्वी विद्या एनवायरमेंट, सूर्य विद्या सोलर स्टडी होती थी, चंद्र व लोक विद्या लूनार स्टडी, मेघ विद्या वेदर फोरकास्टिंग, पदार्थ विद्युत विद्या यानी बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या सोलर एनर्जी, दिन रात्रि विद्या दिन और रात्रि के बारे में जानकारी होती थी, सृष्टि विद्या स्पेस रिसर्च होता था, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विद्या जियोग्राफी, और काल विद्या यानी कि टाइम, भूगर्भ विद्या जियोलॉजी, और रत्न व धातु विद्या जेम्स एंड मेटल्स। ये सारी विद्याएं अभी हैं, लेकिन पहले ये गुरु एक ही गुरु के अनुसरण में सारी विद्याएं सीखी जाती थी। आकर्षण विद्या ग्रेविटी सिस्टम, प्रकाश विद्या सोलर एनर्जी, तार विद्या कम्युनिकेशन, जो कि जैसे तार पहले बोलते थे फोन से जो वो बातचीत करते थे उसको तार बोलते थे, अभी भी हमारे सूरीनाम के लोग फोन को जो हमारे मोबाइल फोन को उसको तार ही बोलते हैं, कि लेकिन वो पहले की विद्या।
0: तो राजेंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक बिल्कुल आजकल जब मोबाइल का समय हो गया है और फिर भी लोग अभी कहते कि कोई तार करिस, घर पे आते हैं तो पूछते कोई तार करिस, तो यानी कि कम्युनिकेशन
1: है। पुरानी विद्या है ना, जब तार तार के माध्यम से पहले बात होती थी जब शुरू हुआ है, और जब एक तार दूसरे तार से जुड़ता था वायर यानी तब वो तार यानी वायर तब बात हो पाती थी, लेकिन आजकल फ्रीक्वेंसी के मोबाइल मतलब चलता फिरता उसमें ऑटोमेटिक वो तार की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आप लोग बोलते हैं उसको तार ही बोलते हैं अभी भी। तो यानी वैदिक पुराना जो सिस्टम है उसी में चल रहा है। तो अच्छा, विमान विद्या प्लेन के बारे में बात होती थी, जलयान विद्या वाटर रेसल्स के बारे में बात होती, अग्नेय अस्त्र विद्या आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बारे में, जीव जंतु विज्ञान विद्या जियोलॉजी यानी बॉटनी, और यज्ञ विद्या मेटेरियल सिक यज्ञ विद्या यानी जो आप लोग पंडित लोग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं उसके बारे में विद्या। ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की, जो वैज्ञानिक विद्या है इन ये सब बात है। अब बात करते हैं व्यवसायिक और तकनीकी विद्या की। जो वैज्ञानिक बात विद्या थी वो तो ये सब चीजें है, लेकिन अब व्यवसायिक जो वाणिज्य है, कृषि है, पशुपालन है, इसके बारे में बात है। तो वाणिज्य यानी कॉमर्स के बारे में कृषि एग्रीकल्चर है, पशुपालन एनिमल और पक्षी पालन वर्ल्ड कीपिंग, जो पक्षी रखते थे उसको पालने के उसको भी वर्ल्ड कीपिंग बोलते हैं, पशु प्रशिक्षण एनिमल ट्रेनिंग के बारे में, और यान यंत्रकार यानी मशीनिकल के बारे में, मशीन्स जो होती थी, और रथकार व्हीकल डिजाइनिंग के बारे में, रत्नकार जेम्स जो अंगूठी के अंदर पहना जाता है उसको जेम्स रत्न बोलते हैं, जो पत्थर का होता है, सुवर्णकार ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में, वस्त्रकार टेक्सटाइल यानी जो वस्त्र बनाते हैं उसके बारे में, कुंभकार पोएट्री, लोहकार मेटलर्जी, तक्षक रंगसाज डाइंग के बारे में, और खटवाकर रज्जूकर लॉजिस्टिक के बारे में, वास्तुकार आर्किटेक्ट के बारे में। अभी आर्किटेक्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है क्योंकि वो वास्तुकार है, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। पाक विद्या यानी कुकिंग, जो सब लोग घर में खाना पकाते हैं, बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, आज मेरे यहाँ पार्टी कल, तो वो एक से एक खाना लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ तो उसकी तारीफ हो, और उस बारे में बहुत पहले ही गुरुजी सब सिखा देते थे। तो पाक विद्या यानी हर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन बनता है और एक दूसरे को बुला के उसको खिलाते हैं और वो कहता है वाह बहुत अच्छा था, तो जो बनाने वाला है उसको उससे अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं पाक विद्या। सारथ्या, सारथ्या बोलते हैं ड्राइविंग को, जो ड्राइविंग करते हैं। नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट की बात है। सूचीकार डाटा एनर्जी, और गौशाला प्रबंधक एनिमल रखने के वाली जो पद्धति थी, जो गाय रखते थे उसको गौशाला प्रबंधक बोलते हैं। और उद्यानपाल हॉर्टिकल्चर के बारे में, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि बाग, बाग यानी बगीचा, फलों का बगीचा, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और वनपाल जो जंगल में हॉर्टिकल्चर है, जंगलों में बड़े बड़े बगीचे लगाते हैं, उसको भी हॉर्टिकल्चर। नापित पैरामेडिकल जो नापते हैं, यह सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी, पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हुए तो यह विद्या भी लुप्त हो गई। आज मैकालय पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। मैकालय यानी जो एक अंग्रेज था उसने एक शिक्षा बनाई, उसको मैकालय की शिक्षा बोलते हैं। उसने एक सिस्टम बनाया शिक्षा का, और उसने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसी के अनुसार अभी भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मैकालय पद्धति। तो ये सब अभी भी चल रहा है, और भविष्य जो है किस तरफ जा रहा है सब लोग जानते हैं। ऐसे समय में गुरुकुल पुनः उद्धार की आवश्यकता है। जब ऐसा एक समय आ गया तो गुरुकुल फिर दर्शाता है कि वैसे सिस्टम होना चाहिए था जो पहले था, तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा हो जाए संजय जी, और इसके बाद बातचीत जारी रहेगी।
0: जरूर राजेंद्र जी, हम सब जरूर एक सुंदर सा नगमा रख रहे हैं, और उसके बाद में हम सब फिर ये गुरु का शिक्षा जो आज हम सब के लिए आप रख रहे हैं और आगे को और बढ़ाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और जा कर के राजेंद्र जी जो हम सबके संदेश रख रहे हैं, और हमारे भाई नोनो जी जो रोटरडम शहर से फ़ोन किए, इस बात को सुन करके उन्हें भी और ये बात एहसास हो रहा कि बिल्कुल पहला के पहले के कितना चीज़ जो आज नहीं है और उस पर हमें और दृष्टि देना चाहिए। पर क्योंकि राजेंद्र जी अभी काफ़ी संदेश रखने वाले हैं, सभी सुनने वालों भी आप सुनते रहना। राजेंद्र जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: जी, जैसे कि बात चल रही थी कि गुरुकुल में पहले क्या क्या, एक ही गुरु सब चीज सिखा देते थे, और अभी तो अलग विषय का अलग गुरु, और फिर अलग जो एक चीज जानता वो दूसरी नहीं जानता, और पहले सब रकम का चीज एक ही गुरु सिखाए दे और सब लोग सीख जाए।
0: तो राजेंद्र जी, इस पे तो मुझे कुछ ख्याल आता है। इस पे मुझे ख्याल आते हैं, आप जब यहाँ और हॉलैंड में भी एम्बेसी की ओर से थे, और तो आप संस्कृत, हिंदी, योगा और अनेक अनेक, यानी कि कितनी चीज भी आप भी सिखाते थे, तो इस प्रकार से।
1: हाँ, तो वहाँ पे जिस प्रकार का, क्योंकि मैं वहाँ पे टीचर ऑफ इंडियन कल्चर था, तो जो इंडिया के कल्चर है वो सब चीज सिखाना ही मेरा काम था, और मैंने सिखाया, और इससे लोगों को अति फायदा भी हुआ, लोग सीखे भी, तो ऐसे होना चाहिए। ये वैदिक पद्धति थी, तो मैं वैदिक पद्धति से ही सब लोगों को पढ़ाता था और आगे भी पढ़ाएंगे। तो बात चल रही थी भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, कॉन्वेंट स्कूलों ने बर्बाद किया। कॉन्वेंट एक, यानी कि जो गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों ने स्कूल बनाए, कॉन्वेंट बोलते हैं उनको, उन्होंने बर्बाद किया 1858 में, यानी 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना। कब बना? 1858 में एक एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया, कि इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की, जो लॉर्ड मैकाले है उसने ड्राफ्टिंग की, कि कैसे भारत का जो गुरुकुल सिस्टम वो खत्म किया जाए और हमारी जो शिक्षा उसके अनुसार पढ़ाया जाए। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उससे पहले उसने क्या किया कि जो इंडिया में, हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था थी, उसका सर्वेक्षण किया, मतलब उसने देखा बारीकी से कि ये लोग कैसे करते हैं कि अभी तक हमारे कब्जे में पूरा नहीं हो पाया, इनकी वो है क्या, मेन खूबी क्या है। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था जी डब्ल्यू लूथर, और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लूथर, जिसने भारत, उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। यानी 100 में से जो लूथर था, उसने अपने दक्षिण भारत की रिपोर्ट दी कि 100 में से 97, यानी 97% लोग शिक्षित हैं, और जो दूसरा था उसने कहा वहां तो सारे 100 के 100 हैं। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा, और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। जो मैकाले था, उसने सोचा कि ऐसा तो इन पे राज नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से, लेकिन अगर शिक्षा पद्धति बदल दी जाए तो शरीर से इंडियन होंगे लेकिन दिमाग से हमारे हिसाब से काम करेंगे, इसलिए ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति कर दो।
0: यानी कि उन्होंने अपना चालाकी भिड़ाया,
1: चालाकी शिक्षा से कर दिया उन्होंने। अभी भी लोग गुरुकुल में जो पढ़ते हैं उनका बुद्धि अलग होता है, और जो जो इंग्लिश और दूसरे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनका बुद्धि अलग होता है। तो उससे पता चलता है कि गुरुकुल का विद्यार्थी है
0: कि कॉन्वेंट
1: का है, पता चलता है
0: अपना भारत के।
1: हाँ, तो मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है मुहावरा यानी एक बोल है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों की गैर कानूनी घोषित किया, यानी जो गुरुकुल है वो कानून के अनुसार नहीं, वो गैर कानूनी, ऐसा उसने घोषित कर दिया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। पहले क्या करते थे कि समाज कुछ ना कुछ शिक्षा पद्धति के लिए कुछ, कोई खाना देता था, अन्न देता था, कोई पैसा देता था, ऐसे चलता था। लेकिन जब उसने गैर कानूनी कर दिया तो वो सब चीज कम होने लग गया। फिर संस्कृत को गैर कानूनी, जो संस्कृत भाषा है उसको बोला कि ये गैर कानूनी, कानूनी नहीं है, ये लॉ में नहीं है, और इस देश के गुरुकुल को घूम घूम कर खत्म कर दिया, उसमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 732,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 750,000, यानी हर गांव में एक गुरुकुल होता था, मतलब औसतन एक गुरुकुल होता ही होता था एक गांव में। वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, न कि न राजा महाराजा। गुरुकुल में कितना विषय पढ़ाते थे, 18 विषय, 18 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और समाज के यानी सभी लोग उसको, गुरुकुलों को चलाते थे, राजा महाराजा लोग उसको नहीं चलाते थे, समाज के लोग चलाते थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह के सारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया, और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर दिया, और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि जो शिक्षा प्रणाली थी उसको खत्म कर अपने अनुसार शिक्षा बनाई, और यूनिवर्सिटी भी चल रही, तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए, और फिर आगे की बातचीत मैकाले की बात रखी जाए।
0: जरूर राजेंद्र जी, और हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे और फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने गुरु के अंतर्गत जो संदेश सुन रहे हैं, राजेंद्र जी जो जुड़ा हुआ है भारत से और हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, जिन्होंने इस बात को सुनकर उन्हें पुराने ख्यालों और आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने और नानी नाना आजी आजा को जो भारत से आए थे उनका संदेश सुने। पर संदेशों में संदेश क्या है राजेंद्र जी?
1: उनके जो आजी आजा भारत से गए थे और वो इसी गुरुकुल पद्धति से गए थे, तो आज का जो विषय है इसलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा कि अगर यही पद्धति मेंटेन रहती तो आज हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था, अभी भी है, लेकिन उसकी ओर उसी पद्धति के अनुसार बहुत आगे बढ़ा जा सकता था। इसीलिए सब लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती और फोन स्टूडियो में करके भी बताते हैं ताकि हम लोगों को पता चले। बात कर रहे हैं, मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूल से पहले बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे तो इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाए, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। यानी अंग्रेज चले गए लेकिन अपना वो नहीं छोड़ा, तो कहते वो आज भी कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन औलाद ने छोड़ी, तो वो ऐसे बात करते हैं। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जैसे बच्चे स्कूल के आते हैं, हमारे साथ में भी अभी योग में आ रहे थे, तो उनको बोलते हैं कि एक दो तीन चार सौ तक गिनती आती, वो कहते हैं नहीं आती है, और 1 2 3 4 तो वो कहते हैं हाँ ये तो आती है। तो इस प्रकार की जो बात मैकाले जब कह रहा है और आज सिद्ध हो रही है तो साफ साफ देखने को मिल रही है। उस समय की जो चिट्ठी थी वो अभी एकदम साफ दिखाई दे रही है। अपनी भाषा बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरे पे रोप पड़ेगा, हम तो खुद में हीन हो गए, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है दूसरे पर क्या रोप उसका पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली और पढ़ी और समझी जाती है। जो हमारा रेडियो का प्रोग्राम है वो 188 देशों में सुनाई देता है।
0: जी हाँ, जी हाँ राजेंद्र जी, 188 देशों में।
1: हाँ, लेकिन जो देश हैं दुनिया में वो 204 देश है, तो कुछ देशों में नहीं सुनाई देता क्या हम लोगों का जो प्रोग्राम है?
0: अब आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट से सुनेंगे तो सुन लेंगे,
1: वो उन देशों में भी सुना जा सकता है
0: जरूर।
1: और एक नया देश जो बना है कैलासा, उसमें
0: कैलासा देश के बारे में तो अभी तो हमने नहीं सुना है राजेंद्र जी, क्या उसके बारे में कुछ और संदेश है?
1: साउथ अमेरिका में एक स्वामी जी भारत के गए हैं, उन्होंने एक अलग से देश बनाया है, उसका नाम है कैलासा। तो आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसका वीजा भी लगा है, पासपोर्ट भी बना है और सब प्रकार का सुझाव है वहाँ पे। उन्होंने अलग एक कंट्री, नई कंट्री बनाई, लेकिन वो 204 देशों में आती कि 205 में आती है ये देखना पड़ेगा। ये विषय गूगल सिद्ध करेगा, गूगल बताएगा कि कौन से में आती।
0: जरूर गूगल महाराज से इसे और उस पे चेक करेंगे,
1: गूगल महाराज इसमें ज्यादा स्पष्टता बता पाएंगे।
0: सही बात।
1: फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो 11 देशों में अगर है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा 204 देशों में कैसे हो जाएगी? ये विषय है। संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा है और उसको जो बोलता है एकदम शुद्ध और सटीक, तो वैसे ही वो शुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है, जो शब्द है उसके समृद्ध नहीं है, यानी हेल मोय नहीं रही, वो हल्की दरिद्र सी है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी, और ईसा मसीह जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा, अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती है। यानी जो ईसा मसीह भाषा बोलते थे वो बंगाली जो भाषा हमारे देश की है उससे मिलती जुलती भाषा थी। समय के काल चक्र में वो भाषा बिल्कुल एकदम लुप्त हो गई, यानी अब वो भाषा नहीं रही। तो क्यों ना हम लोग को एक सुंदर सा संदेश की ओर बढ़े और फिर बातचीत जारी रही।
0: जैसे आप कहो राजेंद्र जी, शांता जी वो
1: सुंदर सा जो नगमा है, शांता जी के पिटारा से निकला हुआ नगमा सुंदर ही होता है
0: हर वक्त हर समय। और उसके बारे में हमें कोई चिंता करने की बात नहीं।
1: हाँ जी

0: जिस प्रकार से ये सुंदर सा गीत रखा गया, शांता का पिटारा से निकाला हुआ, पर हमें भी समय पे ध्यान देना पड़ता है। और राजेंद्र जी जो संदेशों में और भी संदेश रखने वाले हैं, तो राजेंद्र जी आगे का कार्यक्रम में क्या संदेश है?
1: जो बातचीत चल रही थी गुरुकुल पद्धति की और जो भाषा की बात चल रही थी, उसमें थोड़ा सा और संदेश है कि लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अमेरिका में, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, यानी वहाँ की जो भाषा है वो फ्रेंच में है, और जो भी वहाँ पे काम काज होता है समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है, तो फ्रेंच में सब भाषा बोलते हैं, वहाँ लिखी जाती है, उनका कभी भला नहीं होता। और यही मैकाले की रणनीति थी, जो अपनी भाषा में काम नहीं करता, बोलता नहीं, उनका भला नहीं हो सकता। और मैकाले भी यही कह रहा है, जिसमें लगभग वो विजय पा चुके, क्योंकि आज का युवा भारत को कम यूरोप को ज्यादा जानता है, भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों को नकल करता। पाश्चात्य यानी जो विदेश है, भारत भारतीय देश है, वैसे जैसे वो करते हैं वैसे भारत भी, भारत के नए बच्चे लोग करते हैं, और अपने संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को प्रमुखता और विशेषता को नहीं जानते हुए भी वामपंथी यानी जो भारत दूसरे देश की नकल करते हैं उनके समर्थन करते हैं। सभी बंधुओं से एक चुपता सवाल, हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, यानी हमारा जो वैदिक सिस्टम है, यानी पुरातन का जो सबसे पुराना सिस्टम है, उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमारे राष्ट्र धर्म सिखाता है, और धर्म से ही हमें सामाजिकता सिखाती। धर्म यानी कोई, हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं एक वैदिक धर्म की, जो सबसे पुराना है उसकी बात चल रही है। धर्म सब में सामाजिकता सिखाता है, वैदिकता यानी सब सामाजिक एक जुटता रहती है, और इसी में हमारे माता पिता गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्योछावर करने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो हमारे गुरु हैं माता पिता हैं, उन्हें जो यही बात करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पुरानी जो चीजें हैं वो मेंटेन रहे, चाहे तो प्राण ही क्यों ना चले जाए, और हम जो हमारा जो सनातन है यानी सबसे पुराना सिस्टम है उसी के अनुरूप अगर चले तो वो एकदम वैदिक वेदों के अनुसार बनाया हुआ और सब एकदम साइंटिफिक है, उसके अनुसार अगर चलाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बातचीत हमारी आज जो गुरु की महिमा के बारे में थी, मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज को सुने और समझे होंगे उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और संजय जी, आप इसके बारे में कुछ, 2 मिनट का समय है आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको और ज्यादा क्लियरिफाई जस्टिफाई किया जाए।
0: राजेंद्र जी, पूछना क्या है समस्त, और यानी कि संदेश तो आपने रख ही दिए हैं, जो पहले और गुरुकुल में मिलता था, जो गुरु और जो लास्ट में जैसे कि आपने कहा कि गुरु माता पिता और गुरु बंधु, किस प्रकार से कि कैसे कौन गुरु है, अभी इसके बारे में और भी चर्चा किया जाएगा। क्यों ना हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी जरूर।

0: जी संजय जी, इसके बारे में या अनुराधा जी आपको मैं बताती हूँ और पूछती हूँ कि जो हम स्कूल में ऐसे ही शिक्षा पाती हूँ ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये है सिर्फ अपने परिवार को कुछ देने के लिए या अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, पर जो ग्रंथों से हम शिक्षा लेते हैं तो उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: आपने सही कहा शांता जी। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए हमारे जीवन में हमें ज्ञान तो बहुत जगह से मिलता है और गुरु ज्ञान गुरु से मिलता है, पर सबसे जो पहला ज्ञान हमें अपने जीवन में मिलता है वो है अपनी माता पिता से और अपनी माँ से। तो माँ ही हमारा जो है, जो हमारी मार्गदर्शन करती हैं। सबसे पहले हम जीवन में इस दुनिया में आते हैं तो माँ केवल शब्द मात्र नहीं है अपितु इसमें पूरा संसार समाहित है। माँ की जितनी भी हम व्याख्या की जाए उतनी कम है। माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक माँ जीवन दाता होने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के भी रोल निभाती हैं, जैसे जन्मदाता है माँ, पालनहार है माँ, प्रथम गुरु है माँ, माँ अच्छी दोस्त है, रक्षक है माँ और हमारी कोच है माँ। और इसी प्रकार से जीवन के हर मोड़ में माँ अनेक प्रकार से हमारे साथ रहती हैं। माँ हमारी माता होने के साथ ही वह हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ के लिए, मेरे लिए अगर मैं माँ के बारे में बोलना चाहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। सभी ये इस बात से मेरे से सहमत होंगे कि हमारे जीवन में हमारे माँ का कितना उनका कितना बड़ा रोल होता है। हमें वो जीवन के बारे में सिखाती हैं, हमें कितना कुछ ज्ञान देती हैं और सबसे प्रथम ज्ञान तो हमारी माँ ही हमें देती हैं। तो माँ के लिए तो माँ तो हमारी सबसे बड़ी गुरु हैं। और आप अगर ये गाना सुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को, ये बहुत ही सुंदर गाना है, माँ मेरी माँ।

जैसे मैंने पहले बोला, माँ हमारी माता होने के साथ ही वह हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ की आंचल में रहकर हम चलना और बोलना सीखते हैं। माँ हमें अच्छे संस्कार देती हैं। अच्छा, माँ हमें क्या सही है और क्या गलत उसकी पहचान करना सिखाती हैं। तो माँ का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें प्राथमिक ज्ञान अपनी माँ से ही मिलता है। हम जो भी कुछ सबसे पहले सीखते हैं वो हम अपनी माता से ही सीखते हैं। इसलिए मैं इस बात को काफ़ी गर्व से के साथ कह सकती हूँ कि मेरी माँ ही मेरी प्रथम गुरु हैं। भगवान से ज़्यादा महत्व माँ का होता है। भगवान भी माँ की ममता पाने के लिए तरस जाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जुबान में सबसे पहला शब्द माँ का ही आता है। हम कहते हैं हे माँ, ओ मम्मी, हम उन्हीं को याद करते हैं। तो माँ हमारे रग रग में रहती हैं, हमारे पूरा जो अस्तित्व है वो हमारी माँ से ही हमें मिलता है। इसलिए माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप कह सकें तो माँ का दर्जा तो हम भगवान के बराबर, क्या भगवान से ऊंचा मानते हैं? तो क्योंकि माँ जो है वही हमें इस संसार में उन्होंने हमें लाया है। एक माँ और माँ के बच्चों का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, परंतु अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार की संकट या आँच नहीं आने देती, ना बर्दाश्त करती है। इसलिए माँ का हमारे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है। एक माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। माँ बच्चों को जन्म देते समय असहनीय पीड़ा को सहन करके बच्चे को इस दुनिया में लाती है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी खुद दो बेटियाँ हैं। तो मैं जब अपनी बेटियों से कहती हूँ, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बनना किसको कहते हैं। क्योंकि जब तक आप मेरी बेटी बेटियां जब हुई, तभी मेरे को अपनी मदर की भी वैल्यू पता चलती है कि वो उन्होंने कितना कष्ट सहा जो हमें इस दुनिया में वो लाई। क्योंकि माँ हर कष्ट सह जाती है अपने बच्चों के लिए। वो हजारों कष्ट सहन करके बच्चों का पालन पोषण करती है, तथा जीवन जीने की सही राह माँ ही हमें दिखाती है। इसलिए माँ के प्रति जो हमारे

0: आकाश खेर ने अपने आवाज़ से ये सुंदर सा गीत हम सबको सुनाए और ख़ास करके अभी संदेश और आने वाले हैं, आप सुनते रहना और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए, और कार्यक्रम इसी का लक्ष्य यही है। दोस्तों, हम सब और संदेशों में संदेश जो अनुराधा जी जो रख रहे हैं, तो अनुराधा जी आगे अपना और संदेश रखिए।
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे माँ के दिल को ठेस पहुँचे और उनके आँखों में आंसू आए। माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। बचपन में जब बच्चा जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे लिए अपनी नींद गंवाकर हमें प्यार से लोरियां सुनाती है, हमारे लिए कितना कष्ट सहती है, दुनिया से लड़ जाती है। और जहां बच्चा या हम बच्चे जब होते हैं तो हम गिरते हैं तो माँ आकर हमारे आंसू पोंछती है और हमें प्यार से अपनी गोद में बैठाती है। तो वो माँ जब बूढ़ी हो जाती है जो और हम जवान हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे हमारा क्या कर्तव्य है हमारी माँ के लिए। और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी माँ के आंखों में कभी आंसू ना आए, उन्हें कभी अकेलापन ना महसूस हो। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जीवन में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है अपने रोज के एवरीडे लाइफ में, कार करता अपने कार में, अपने रोज अपनी की फैमिली में, कि हम अपने माँ बाप को निग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ करा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप जब वो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं उनकी हम सेवा करें, उनका ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, हम दूर रहते हैं और आपके माँ बाप आपके करीब नहीं हैं, कहीं दूर दूसरी जगह में हैं, तो आप एक केवल उनको फ़ोन करके ही बात कर सकते हैं। आप अपने माँ को, आपको पता है एक माँ आपके उस फ़ोन कॉल के लिए कितना इंतज़ार करती हैं, कितना वेट करती हैं, वो उनके लिए कितना अनमोल